0: Like our gold. The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
1: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
2: Dubai is the place. 11, 11.
1: Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
3: Danube 11, 11. Danube Properties.
4: माय फ्रेंड, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है।
5: इंडिया के टॉप 1% होस्टेड बाय अनिल कपूर एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार।
6: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
7: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

की बात जैसी हो न हो किस्मत की वो है की नटीनी इस कदर हो कि मेरी मालूम हो बेटी

0: This is Leica Gold.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
2: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
3: Four beers, please, garçon!
2: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
4: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे, आपके अपने लाइका गोल्ड पर

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

0: है
1: लाइका गोल्ड।
2: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ बी अ पार्ट ऑफ इट। क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ। द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई हैज समथिंग फॉर एवरीवन विद इट्स एम्बिशियस 11-11 इनिशिएटिव एमिंग टू कंप्लीट 11 लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स इन जस्ट 11 मंथ्स फीचरिंग व्यूज, ओएसिस, ओशंस, एलीट्स, फैशंस एंड स्पोर्ट्स। देयर्स एन अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू, सो व्हाई वेट? बी पार्ट ऑफ दुबई'स ग्रोथ स्टोरी। कॉल द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई लंदन ऑफिस टुडे ऑन 02039635757 to arrange your meeting.
0: We're finally going home for the wedding.
3: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
4: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
3: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
4: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
3: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
4: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
5: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
6: रात भर न थमे न रुके क्लासिक नगमे आपके अपने Leica Gold पर।
7: हम प्यार तुम्हें करते हैं, हमें अपना

बुजुर्गों से ये सलूक नहीं करते। आपने मुझ पर आग डाली, मैं आपके गले में डाल दूंगा। डर गए? अच्छा चलो, माफ कर दिया।

उत्तम नीच हुकुम लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भवाई है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहू मैं कह न कोए। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै वे परवाह। साचा साहेब साच नाए।

विच जाणीए नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर ना आवई तां वात ना पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनिए।

सुनिए हाथ वैसगा नानक भक्तां सदा विगास सुनिए दुख पाप का नास मन्ने की गत कहीं ना जाए जे को कहे पिछ

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

लख दरियाओ। कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाव, असंख पूजा असंख तपताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार। कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अव

जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती छित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नान गया जापै जाए, धर्म ख

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Like a Gold, Traffic and Travel.
2: Good morning, Peter here with the latest. Starting with your public transport links, the Central Line. There's a late finish of engineering work, meaning there's no service between Leytonstone and Lowton and between Hainault and Woodford. Minor delays being reported on the rest of the line too. The Bakerloo line, we've got severe delays. That's due to problems with the signals at Piccadilly Circus. To your roads, the A301 Waterloo Road is closed in both directions. That's due to a gas leak at the minute. We've also got a closure for roadworks of the A103 Tottenham Lane at Hornsey in both directions, and the A504 Church Road westbound at Hendon, both due to waterworks. That's your latest traffic and travel.
3: My mum, a legend to the end. A tough time, made easier by Co-op Funeral Care. A proper chat over a cuppa, a few classic mumisms, that camping trip in Skegness. And we've got it. A brilliant goodbye that felt right.
4: We're here in your community to guide, support, or simply talk things through. However you choose to say goodbye, we help you own it. Co-op. Owned by you. Right by you. Search Co-op Funeral Care for your nearest funeral home.
5: Like our gold.
6: This part of the show is brought to you by Anupama. Every day at 7:30 p.m. on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar.
7: Oh, look at that bump. You're glowing.
8: Oh, thanks.
7: Have you had your whooping cough and RSV vaccines yet?
8: Oh, no, not yet.
7: Definitely get both. My niece caught RSV after she was born. It was awful.
9: RSV and whooping cough can cause serious illness in young babies. Being vaccinated during pregnancy passes on immunity and helps protect your baby in their first months of life. Speak to your midwife or GP practice. Stay strong, get vaccinated. Search nhs.uk/pregnancy vaccinations.
10: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
11: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
12: Dubai is the place. 11,
11: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
12: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
13: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
14: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
15: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
16: ये तो बताओ, कोई पता चला?
15: गुरु, गुरु.
17: इस 6 नवंबर को The Prince Regent होटल में
15: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है.
17: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
18: साधु, तो शुभकामनाएं में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
19: शीघ्र शीघ्र
17: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर.
20: टू बुक कॉल 0208 514 5400. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
21: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
22: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
23: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
24: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड. मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
6: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
0: पास आए।
1: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London.
0: पहला नशा।
1: Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: Leica Gold. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो laikagold.com पे
3: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स

दिलरुबा महफिल में तेरे हुस्न का, तेरे हुस्न का शोला जो भड़ के, शोला जो भड़ के, पहलू में बेकरार दिल बे

0: मास्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है. अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575. केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD. प्लीज कॉल ऑन 07466997575.
3: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
4: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
5: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
4: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
5: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
4: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
5: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
6: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
7: Sonatours.co.uk special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours on 0208-951-0111.
8: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
9: Gold Breakfast with Kajal. Leica Gold.
10: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड.
1: दिस गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस एंड स्प्रेड फेस्टिव जॉय विद योर लव्ड वंस इन इंडिया
2: विद ICICI बैंक UK. सेंड मनी टू इंडिया एंड गेट अ 20 पैसे प्रेफरेंशियल एक्सचेंज रेट.
1: सिंपली यूज प्रोमो कोड गणेशा 20 व्हेन यू ट्रांसफर. द प्रमोशनल पीरियड इज 14th सितंबर टू 24th सितंबर 2026.
2: सो दिस गणेश चतुर्थी मेक every rupee count and share the joy from the UK to India.
1: ICICI Bank UK. Transfer now. Celebrate together.
3: ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
4: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
5: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
4: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores. We'll be right back.

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
2: तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो.
3: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: फील गुड क्लासिक्स ऑल डे, लाइका गोल्ड.

0: काजल्स मॉर्निंग मंत्रा प्रेजेंटेड बाय मंत्रा हॉलिडेज, योर फ्रेंडली हॉलिडे पार्टनर फॉर यूके, यूरोप एंड अदर डेस्टिनेशंस। फॉर योर मेमोरेबल हॉलिडेज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड बजट, कॉल 0203-773-633 टू बुक योर ड्रीम हॉलिडे। This is like a gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit TravelHubWorld.com.
2: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
3: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
4: नमस्कार, मार्च 2027 માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માણો જાપાનનું અદ્ભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન. આવો અને જુઓ જાપાનનું સુંદર ચેરી બ્લોસમ, શ્રેષ્ઠ સાઇટ સીન, સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો. માત્ર 4499 પાઉન્ડ્સ પર પર્સન, જેમાં ફ્લાઇટ્સ, એકોમોડેશન અને એક્સકર્ઝન્સ બધાનો સમાવેશ છે. સીટ્સ લિમિટેડ છે, એટલે આજે જ તમારું બુકિંગ કરો. વિઝિટ maharajatours.co.uk ઓર કોલ 07956154846.
5: हैरो, इंतजार खत्म. मशहूर स्पाइस विलेज अब हैरो में खुल गया है. सिजलिंग मिक्स्ड ग्रिल्स, सिग्नेचर मसाला फिश, लजीज कराहीज और तंदूर से निकला गर्मा गर्म फ्रेश नान, साथ ही सबसे बड़े वेजिटेरियन मेन्यूज में से एक, एक अलग वेजिटेरियन किचन में तैयार. तो फैमिली और फ्रेंड्स को साथ लाइए और चखिए स्पाइस विलेज का अवार्ड विनिंग स्वाद. आइए 124 डोमिनियन परेड स्टेशन रोड, हैरो. स्पाइस विलेज हैरो, नाउ ओपन. खाने, मिलने और सेलिब्रेट करने का आपका नया ठिकाना.
6: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
7: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
8: The cycle of love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true-life adventure.
9: I left behind everything I knew.
8: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
9: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
8: The Cycle of Love. In cinemas now. Book today at thecycleoflovefilm.com.
10: SonaTours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off or lose the discount after. Call SonaTours now on 0208-951-0111.
11: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
12: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
13: गोल्ड ब्रेकफास्ट विद काजल.
14: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: से निराला।
1: मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी।
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
3: Across Greater London, this is Kajal on Breakfast.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 a 24-hour line.
4: Maa Krupa Foundation UK taraf thi Srimad Bhagavat Saptah Gnan Yagna nu open invitation 29 September thi 5 October sudhi roj bapore 3 vagya thi sanje 6 vagya sudhi katha vachan karshe pujya shri Jignesh dada venue 10 Stonefield Way first floor unit 2 south Ryslip HA40JS roj katha pachi mahaprasad pothi yatra kapil narayan katha krishna janma govardhan lila rukmini vivah ane purnahuti havan jeva pavitra prasango ma jarur jodao vadhu mahiti mate contact karo 0777-228-7509
3: 0730-009-8823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेशन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 0730-009-8823
5: हमारी रक्षक है वो
6: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट
7: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है कौन कर रहा है
6: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमाज फ्राइडे 25th September. For UK release details, follow Bakrania Media on Instagram.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
2: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
1: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
2: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
1: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस.
2: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
3: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
4: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.
5: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Gold Breakfast with Kajal. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: बामुलायदा होशियार।
1: गुड मॉर्निंग। स्वागत है संगीत प्रेमियों का मनोरंजन की दुनिया में।

0: मंगलवार वर्ष 2026 के सितंबर महीने की 22 तारीख वक्त हो गया है हमारी आपकी मुलाकात का। हाँ, ब्रिटिश घड़ियों में 10:05 हुए हैं। माय नेम इज रवि शर्मा। दोपहर बाद 1 बजे तक बहनों भाइयों मैं आपकी सेवा में ये प्रोग्राम लेकर हाजिर रहूंगा, लेकिन सबसे पहले थैंक्स कहूंगा काजल को। हैव ए नाइस डे काजल, सी यू टुमारो मॉर्निंग। और आइए अब भाई खोलें अपनी डायरी, पढ़ें शायरी और शुरू करें आज का मनोरंजन प्रोग्राम। सताती है जुदाई हमको कुछ घंटे की भी, मगर ये भी सच है कि बढ़ाता है कदर तेरी ये तेरा जाके आना भी। कहा हर एक में खूबी है ऐसी जो कि तुझ में है, किसी का दिल चुराना और फिर दिल का जलाना भी। सताता है हमें हर वक्त फिर भी जहां से प्यारा है, बड़ा आनंद देता है हमें उसका सताना भी। जलाविया कि अब तो हर तरफ ढूंढे तुझे, नजरें पुकारे साथ मेरे तुझको ये मौसम आशिकाना भी।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica, London, Midlands, Manchester. This is the Leica Radio Network.
0: सताती है जुदाई हमको कुछ घंटों की भी, मगर बढ़ाता है कदर तेरी ये तेरा जाके आना भी। चला भी आके अब तो हर तरफ ढूंढे तुझे नजरें, पुकारे साथ मेरे तुझको ये मौसम आशिकाना भी। चला भी आ कि अब तो हर तरफ ढूंढे तुझे नजरें, पुकारे साथ मेरे तुझको मौसम आशिकाना भी।

0: भाई दिल धक धक तो करता होता था, ये टिक टिक करने लगा है आजकल। ओ मैडम, ये जो टिक टिक का पता है ये किसकी आवाज़ है? आपने अपनी पॉकेट में अपनी हाथ घड़ी रखी हुई है, इसको हाथ में पहनो, जेब में मत रखो, नहीं तो टिक टिक टिक टिक होती रहेगी। भाई ये क्या कहते हैं, बैक टू बैक संगीत के साथ प्रोग्राम का शुभारंभ हो चुका है। दिस इज मनोरंजन ऑन लाइका गोल्ड रेडियो एंड इट्स पार्ट ऑफ द लाइका रेडियो नेटवर्क। जहाँ जहाँ भी आप विराजमान हैं, हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, काम पर, दुकान पर, घर पर या अभी तक बिस्तर पर। कई लोग भाई आराम से उठते हैं, क्या जल्दी है, रवि शर्मा की तरह से 3:30-4 बजे उठने की क्या ज़रूरी है कोई पूछे तो। लोग पूछते हैं शर्मा जी इतना जल्दी आप उठते हैं, हाँ तो अक्षय कुमार तो आप बन नहीं पाए। अक्षय कुमार भी बहुत अर्ली उठते हैं, मोदी जी भी बहुत जल्दी उठते हैं, लेकिन वो मुझसे ये पूछते हैं कि इतना जल्दी उठ के आप करते क्या हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ो भाई। बहुत कुछ करना होता है, सुबह सुबह ही दिमाग ताज़ा होता है, ये सारा जो प्रोग्राम है ना ये सुबह सुबह तैयार हो जाता है। आपको बताऊँ, चिंतन सबसे बढ़िया सूझता है प्रातःकाल में, सुबह में। और आपको ये भी बता दूं कि लोग इतना लिख के भेजते नहीं जितने मुझे क्रिएट करने होते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई बात करता है तो उससे भाई एक सेंटेंस लेकर के उससे मिलता जुलता सा तैयार करना होता है। मुझे आइडिया मिलता है लोगों से, बातें करने से, देखने से, सोचने से, घूमने फिरने से, भाई आइडियाज़ मिलते हैं, लेकिन चिंतन तैयार करना होता है सुबह 4 बजे। एक ये होता है कि रात को जब आप सोते हैं, दिन भर की वो सारी बातें, वो खबरें, वो आसपास का माहौल और भाई वो चीज़ें जो घटती हैं वो आपके दिमाग में भरती चली जाती हैं। रात आप सोते हैं ना तो आप बिल्कुल अपने पास होते हैं, हाँ अपने पास। स्वप्न में भी आपके कोई और लोग आ जाते हैं डिस्टर्ब करने आपको, सपने की स्थिति छोड़ो, उससे आगे जो सुसुप्ति की अवस्था है बहनों भाई, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा के पास होते हैं, वो जो आपके भीतर है। अगर वो नहीं होता ना तो सांस कैसे चलती, आप तो सोए पड़े दिल कैसे धड़कता, आप तो सोए पड़े हैं बिल्कुल डेड की तरह से, लेकिन सारा फंक्शन चल रहा है, सारा काम हो रहा है, तो भाई वो है हमारे भीतर, सारे सिस्टम को चलाता है। तो वहाँ बड़े शांत होते हैं, वो जो दिन भर की चिंताएँ हैं, फिक्र हैं, परेशानियाँ हैं, सब खत्म जब सो जाते हैं तब। सुबह उठते हैं तो भाई बड़ी ताजगी होती है, अब फिर से भरने शुरू होते हैं, फिर से चिंताएं नज़दीक आती हैं। उससे पहले पहले हम परमात्मा को याद कर लेते हैं, उससे पहले पहले हम सृजन यानी सोचते हैं, रचते हैं, बनाते हैं, ये दैट्स हाउ वी स्टार्ट द डे। चलिए अब भाई आ गए हैं तो कुछ करके यहाँ से जाएंगे। आपको पहले सबसे हम पाउंड का रेट बताएंगे भारतीय करेंसी में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. आज एक पाउंड के बदले आपको दे रहे हैं 127.6 रुपीस। Yes, that's today's rate. 127.60 रुपए For £1, भाई यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाई यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. This part of the show is brought to you by Anupama every day at 7:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: We're finally going home for the wedding.
3: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
2: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
3: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
2: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
3: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
2: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
4: व्हाटफुड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
5: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
4: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
5: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुड, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
2: London, get ready for an unforgettable night.
6: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
2: comes to the O2 Arena, London on 18th April 2027.
6: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
2: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
6: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
2: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network. Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
7: माया भाईनी मौजमाणमां थई जाओ रेडी। माँ कृपा फाउंडेशन्स यूके प्रेजेंट्स भव्य डायरो। माया भाई आहिर, जयश्री भोजविया अने निर्मल सिंह झाला साथे 26 सितंबर 2026 ना रोज।
8: वेन्यू: फर्स्ट फ्लोर, यूनिट 3, 10 स्टोन फील्ड वे, साउथ राइसलीप, HA40JS।
7: टिकट्स 30, 40 and 50 pounds। लाइट रिफ्रेशमेंट इंक्लूडेड।
8: बुकिंग माटे कॉल करो रश्मि शाह 0772-287-509।
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: Two businesses,
11: same town,
10: same service.
11: One appears on page one of Google,
10: the other doesn't.
11: Guess which one gets the customer?
10: The truth is brutal.
11: The first page of Google gets the business.
10: Everyone else gets what's left.
11: So here's the real question:
10: when your customers search for what you sell, do they find you?
11: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
10: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
12: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
13: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
12: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
14: Sonatours.co.uk special offer holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
15: Ranjishe sahi dil hi dukhane ke.
16: Aapka naya station Laika Radio Ghazals bahut jald aa raha hai.
17: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: वेरी गुड मॉर्निंग भाई, आप मनोरंजन प्रोग्राम सुन रहे हैं और अब वक्त हुआ जाता है समाचारों का। एक खबर जो चर्चा में है वो तो है बर्नहम और ट्रंप की मुलाकात। पहली बार मिलेंगे, मतलब प्रधानमंत्री बनने के बाद बर्नहम जो है ट्रंप से पहली बार मिलेंगे। और ये भी समझा जा रहा है कि RAF टू गिव मिलिट्री सपोर्ट टू सऊदी अरबिया। पहले ये रास्ते में रुकावट थी, लेकिन अब मतलब पहले इस तरह के बयान नहीं थे। ब्रिटेन की सपोर्ट टू सऊदी अरबिया हुतीस से मुकाबले में या फिर भाई ईरान की ओर से जो अटैक हो रहे हैं उनके मुकाबले में अब ब्रिटेन जो है उसका रुख थोड़ा सा लचीला नज़र आ रहा है। और क्या क्या है आज के प्रमुख समाचारों में, लेट्स फाइंड आउट। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। चीन ने ईरानी एयरलाइंस पर अमेरिका की ओर से जो पाबंदी लगाई है उसके बारे में चीन ने उनको गैर कानूनी बताया है। अमेरिका की ओर से ईरानी एयरलाइंस पर लगाई गई पाबंदी को चीन ने गैर कानूनी बताया है, अवैध बताया है। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि चीन हमेशा ऐसे एक तरफा प्रतिबंधों का, पाबंदियों का विरोध करता रहा है जिनके लिए इंटरनेशनल कानून का आधार या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी नहीं हो। भारत से आने वाली खबरों में ये बिहार की एक घटना है। जमुई यौन उत्पीड़न नाम से के एक सेक्सुअल टॉर्चर एक लड़की के साथ जो घटना घटी है उस पर खूब हंगामा हो रहा है। बिहार के जमुई में एक नाबालिग स्टूडेंट के यौन उत्पीड़न के मामले में आज मुख्य अभियुक्त नंदन यादव पुलिस मुठभेड़ के दौरान जख्मी हो गया है, गोली लगी है उसको। मुंगेर रेंज के DIG राकेश कुमार ने बताया है कि पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान नंदन यादव के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इस मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस मामले में और भी 5 अभियुक्त बताए जा रहे हैं जिनमें से 3 नाबालिग हैं जिन्हें पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। G7 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने एक साझा बयान जारी करके ईरान से कहा है कि वो यमन के हूती विद्रोहियों को हथियार देना और उनकी हिमायत करना तुरंत बंद करें। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की बैठक से इतर हुई एक हाई लेवल बैठक में G7 देशों जिनमें ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका ने सऊदी अरब पर हो रहे हूती हमलों की भी कड़े शब्दों में निंदा की है। एशियन गेम्स 2026 महिला क्रिकेट फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 217 रन का टारगेट दिया था और भाई वो नहीं पार कर सकी। भारतीय टीम ने ये एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीत कर श्रीलंका को जो है हरा दिया है। सेलिब्रेशन जारी है और भाई ये लोग कहने लगे हैं कि पुरुषों की टीम से बड़ी प्रेरित हो रही है भारत की महिला टीम भी। भारतीय टीम ने एशियन गेम्स के फाइनल मुकाबले में 147 रनों के विशाल अंतर से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। एशियन गेम्स 2026 में ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है। भारत की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी। 20 ओवर्स में सिर्फ 3 विकेट खोकर उसने 216 रनों का स्कोर खड़ा किया। स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी की, 79 रनों की पारी खेली और शेफाली वर्मा इस बच्ची ने भी 48 रन बनाकर टीम को मजबूत शुरुआत दी। ऋचा घोष ने 49 रन बनाकर नॉट आउट रह करके टीम को जितवाया। तो साहब कांग्रेचुलेशंस टू इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। गूगल पर 4,300 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। क्या हुआ भाई, क्यों किया उसने? गूगल पर आयरलैंड के डेटा प्रोटेक्शन कमीशन ने लोकेशन डेटा के इस्तेमाल को लेकर 40.3 करोड़ यूरो यानी करीब 4,300 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह आयरिश डेटा सिक्योरिटी की ओर से लगाए गए सबसे बड़े जुर्मानों में से एक है और ये जुर्माना उस जाँच के बाद लगाया गया जो 6 साल पहले टेक कंपनी के खिलाफ शुरू की गई थी। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियान ने पाकिस्तान को शक्तिशाली देश बताया है, लेकिन क्या कहा है? ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा कि पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने कल सोमवार को हमसे मुलाकात की तेहरान में। उन्होंने कहा दोनों देशों के बीच दो तरफा रिश्तों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई है। ब्रिजेश शाह ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के सीनियर अधिकारियों के बीच लगातार बैठकों से ये साफ होता है कि इलाके में अमेरिका के बढ़ते हस्तक्षेप के बावजूद, दखलंदाजी के बावजूद मुस्लिम देशों के बीच रिश्ते बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि भाई पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी जो है वो ईरान का दौरा कर रहे हैं इस समय। मलेशिया में नौकरी की तलाश के लिए पहुंच रहे हिंदुस्तानी सिटीजन्स की बढ़ती तादाद के बीच हाई कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की है। दरअसल 30 दिनों की वीजा फ्री सुविधा का लाभ उठाकर कई इंडियन सिटीजन्स नौकरी की तलाश में मलेशिया जा रहे हैं। हाई कमीशन ने भारतीय सिटीजन्स को टूरिस्ट के तौर पर मलेशिया की यात्रा कर वहां रोजगार तलाशने या काम करने से सख्त तौर पर बचने की सलाह दी है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कुछ मीडिया आउटलेट्स को व्हाइट हाउस से बैन कर दिया है, जिनमें CNN, MS, Now और पॉलिटिको। अमेरिका के प्रमुख मीडिया आउटलेट्स ने व्हाइट हाउस की टीवी पूल कवरेज नहीं करने का फैसला किया है। दरअसल टीवी पूल कवरेज एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस प्रेसिडेंट के कार्यक्रमों की कवरेज साझा करते हैं, जिससे संसाधनों की बचत होती है। हूती हमलों के बीच सऊदी अरब की मदद के लिए ब्रिटेन अब आगे आया है। ब्रिटेन सऊदी अरब को यमन के हुतियों के हमलों के मद्देनजर डिफेंसिव एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की मदद देगा। प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने कहा है कि सऊदी अरब की ओर से फौजी सहायता की जो रिक्वेस्ट आई है उसके बाद हमने ये फैसला लिया है। डिफेंसिव एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का मतलब है कि एक लड़ाकू हवाई जहाज को हवा में उड़ते हुए ही दूसरे फौजी विमान से जो है ईंधन मिल जाता है, ताकि वो लंबे समय तक हवा में रह सके और उसे बार बार एयरबेस लोड करके ईंधन भरवाने की जरूरत ना पड़े। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सत्तारूढ़ पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के प्रांतीय मंत्री फजल शकूर खान के कथित अपहरण का मामला सामने आया है। उनके अगवा किए जाने का मामला सामने आया है। वहां की सरकार ने दावा किया कि पेशावर में कुछ अज्ञात लोगों ने फजल शकूर खान को अगवा कर लिया है, उनका अपहरण कर लिया है। पेशावर में कल सोमवार को PTI के सीनियर लीडर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी ने यह आरोप लगाया कि फजल शकूर खान को सादे कपड़ों में आए कुछ लोगों ने अगवा किया। उन्होंने दावा किया कि मंत्री की गाड़ी पर गोलीबारी भी की गई थी। अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेंसन ने ऐलान किया है कि 23 सितंबर से दुनिया भर में ईरानी एयरलाइन के लिए हवाई इलाके बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद तुर्की, इराक और जॉर्जिया ने ईरानी एयरलाइंस को अपने अपने मुल्कों में एंट्री पर रोक लगाने का ऐलान किया है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
2: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
3: लौट आइए अब संगीत की ओर और सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की सुरीली आवाज। कुछ वादे कुछ इरादे जो पहले नहीं कर पाए अब करके दिखा दे, इसी साल में या नए साल में, हर साल नया है, हर दिन नया है।

0: Mamster નું પાણી પૂરી અને પાણી પૂરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
3: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
4: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
5: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
6: वेरी गुड मॉर्निंग भाई, ये सरिता सबरवाल की आवाज़ सुनी आपने. और अब रफी साहब की आवाज़ सुनाने से पहले सुन लेते हैं करसन कश्मीरिया. है ये करसन कश्मीरिया? नहीं नहीं, करसन पिंडोरिया साहब. भाई ये अगला गीत उनके नाम करना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं शर्मा जी, आपका प्रोग्राम मैं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सुन रहा हूँ. श्रीनगर जाने की क्या जरूरत थी? अरे घूमने फिरने गए हैं, लेकिन रेडियो साथ लेके गए हैं. आई एम इन श्रीनगर कश्मीर, लिसनिंग टू लाइका गोल्ड. थैंक्स फॉर थैंक्स फ्रॉम करसन पिंडोरिया. हर चेहरा जहाँ चांद है, हर जर्रा सितारा है. भाई फोटो भेजी है उन्होंने कहीं, आप यकीन ना करो.

0: चांद।
1: जन्नत का नजारा है भाई, तस्वीरें देख करके। आपने मुगल गार्डन की तस्वीरें भेजी हैं करसन पिंडोरिया जी, और ये झील मेरा ख्याल डल झील ही होगी या भाई जो भी है भाई, कश्मीर बहुत खूबसूरत है। आप वहाँ का दौरा कर रहे हैं और हम आपकी आंखों से और मन की अनुभूति से कश्मीर को यहाँ लंदन में बैठे देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।
2: ये है लाइका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: And let me tell you the rates by what the rate they are giving. For £1 in Indian currency, they are giving 127.76 rupees. 127 rupees, 76 paise. Afghan Afghani, 86.55. Pakistani rupee, 370.44. Bangladeshi Taki, 164.06. Sri Lankan rupee, 441.04. And Mauritian rupees, 63.67.
2: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: भाई सोने की कीमतें बड़ी जल्दी जल्दी बदलती हैं, ऊपर नीचे दाम होते रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने स्क्रीन देखा था तो 103 रुपए और कुछ पैसे थे, 40-45 पैसे पेंस, 104.45 पेंस फॉर 1 ग्राम गोल्ड, एंड नाउ द प्राइस इज 104.08 पाउंड्स पर ग्राम। भाई कीमतें बदलती रहती हैं जल्दी जल्दी।
2: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.

0: जिंदगी वहाँ सेटल माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट रागासन.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन

0: मैक्सिमम टेम्परेचर आज 25 डिग्री तक जा सकता है, धूप अच्छी खासी खिलेगी। टुडे विल बी ड्राई एंड वार्म डे विद सनी स्पेल्स, ऑल्दो सम एरियाज ऑफ क्लाउड विल ड्रिफ्ट इन फ्रॉम अदर वेस्ट एट टाइम्स। अच्छा होगा मौसम आप कहेंगे, और भाई मिडलैंड में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, हल्की हवाएं चलेंगी। लंदन में 25 डिग्री, 25 डिग्री सेल्सियस।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
2: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.

स्वागत है श्रोताओं का मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। माय नेम इज रवि शर्मा। दोपहर बाद 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। इस समय ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हुए हैं। यह वक्त है चिंतन का, थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और बहनों भाइयों, आज के विचार के लिए हमें प्रेरित किया है श्रीमती सरस्वती शर्मा ने नॉरवुड ग्रीन से। सरस्वती जी लिखती हैं कि जहां बैठे हो ना, सही जगह है तुम्हारे लिए, जो बोलते हो अच्छा लगता है, तुम्हारा प्रोग्राम हमारा दिन बना देता है। पर जिस घटना का जिक्र किया है सुनिए। एक बार बहनों भाइयों, मशहूर गायक कलाकार सोनू निगम बहुत पुराने फटे कपड़े पहन करके, एक टूटा सा हारमोनियम लेकर के, पुराना, और मुंबई के ही एक चौराहे के पास एक सड़क पर बैठ गए और गुनगुनाने लगे। बिल्कुल उन्होंने वेश बदला हुआ था, वो काले घने बाल, परले उनमें मिट्टी, धूल, दाढ़ी बड़ी हुई, बिल्कुल पहचाने नहीं जाते थे, और एक बड़ा पुराना सा चश्मा लगा रखा था। और भाई वो अपने गाने नहीं गा रहे थे, क्योंकि वो तो एकदम पहचाने जाते उससे, लेकिन वो कुछ ऐसा गुनगुना रहे थे जो अजनबी सा था, पर आवाज़ तो वही थी, अंदाज भी वही था। पर जब वो ज़मीन पर बैठे ये गाने गुनगुना रहे थे तो लोग पास से गुजर जाते, कोई कोई रुकता सुरीला समझ के, और कोई कोई तो पैसे भी फेंक जाता उनके सामने। सोनू कहते बड़ा अच्छा अनुभव था। ऐसी ही एक और घटना सरस्वती जी ने इंगित की है, बताया है कि ये 17 जनवरी 2007 की घटना देखो, बिल्कुल ऐसी ही। और भाई ये वाशिंगटन जो राजधानी है, वाशिंगटन डीसी, वहां के एक रेलवे स्टेशन पर, लोकल स्टेशन पर, एक बहुत ही मशहूर वायलिन बजाने वाले कलाकार, जिनकी इतनी डिमांड थी कि भाई उनकी जो कॉन्सर्ट्स वो सोल्ड आउट हो जाती थी। और इतना ही नहीं, उनकी कम से कम जो टिकट की कीमत होती थी वो $100 होती थी, $100 से शुरुआत होती थी। और भाई इनका नाम था शायद समथिंग जे बेल। अब उनके साथ वाशिंगटन पोस्ट, जो वहां का बड़ा मशहूर न्यूज़पेपर है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। और भाई मिस्टर बेल को, जो इतना प्रसिद्ध था 2007 में, तो पूछिए मत, उसकी भाई प्रसिद्धि ऐसी थी कि लोग उसके वेबसाइट पर विजिट करने के लिए वेट करते थे। और कहते 11,000 2004 में उनकी वेबसाइट पर 1 घंटे में विजिट करने के लिए लोग ला रहे थे। अब देखिए उनके साथ वाशिंगटन पोस्ट ने क्या किया कि उनसे कहा कि एक एक्सपेरिमेंट करना है। उन्हें कहा कि आप पुराने कपड़े पहन करके और स्टेशन के बाहर वायलिन बजाइए। अब भाई वही सोनू निगम वाला हाल, भाई फटे पुराने कपड़े और थोड़े से मैले कुचैले, और भाई स्टेशन के बाहर वो अपना वो महंगे से महंगा जो वायलिन, शायद दुनिया का सबसे महंगा वायलिन, उनका सबसे प्यारा साज, वो भाई लेकर के और वो लगे बजाने। चश्मा लगा रखा था, वेश थोड़ा सा हल्का बदला हुआ था, लोग पहचान नहीं पा रहे थे, पर वायलिन वही, बजाने वाला वही जिसका दुनिया में डंका बजता था।

0: पर जगह एक स्टेशन के बाहर। अब वही समय भी था कोई ये 8 बजे के बाद का, 8:15 का। लोग काम पर जाने के लिए बड़ी भीड़ जो है स्टेशन से गुजरती थी, लोग अपने काम पर दौड़ रहे थे, कोई वायलिन सुनने के लिए रुकता नहीं था। 1-2 सेकंड के लिए कोई रुक भी जाता तो भाई तालियां बजाने के लिए नहीं रुकता था आखिर तक।
1: चिंतन, चिंतन।
0: हुआ क्या, 1.25 घंटे में वहां से बताया जाता है कि करीब हजारों की तादाद में लोग गुजरे उस स्टेशन से, और गुजरने वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ एक आदमी ने ध्यान दिया भी, पर जल्दी से गुजरे, भीड़ गुजरी, और कईयों ने तो कुछ पैसे भी फेंके उनके सामने। वो आदमी जिसकी टिकट जो है कॉन्सर्ट्स की कम से कम $100 की होती थी, उस दिन उसके सामने $32 जमा हो गए, $32। उसने पैसे बटोरे किसी को चैरिटी में देने के लिए, अपनी वायलिन बंद की। वाशिंगटन पोस्ट ने यह किस्सा अगले दिन अखबार में छापा, बताया कि आप कितने भी मशहूर क्यों ना हो, कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपको अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए सही जगह चाहिए, थिएटर, सही मंच। और बहनों भाइयों, जगह का कितना फर्क होता है, वैसे एक कलाकार के रूप में ये मेरा अपना भी अनुभव है, लेकिन सरस्वती आंटी ने जिस तरह से बताया, कहती है जिस समय तुम ये चिंतन पेश कर रहे हो ना बेटा, इसी समय थोड़ी ही देर में मेरी ही हमनाम साध्वी सरस्वती दीदी अपना व्याख्यान शुरू करने वाली हैं। आज अभी थोड़ी देर में लक्ष्मी नारायण मंदिर नेविल क्लोज हाउंसलो में उनका प्रवचन शुरू होगा। तो ऐसे संत, ऐसे सात्विक पुरुष जो है मंदिर में जब बोलते हैं लोग सुनते हैं, भीड़ जमा होती है। कहते हैं अब 11:30 बजे से उनका व्याख्यान शुरू होगा, 1:30 बजे तक चलेगा, साथ में प्रसाद भोजन की व्यवस्था भी है। आज 22 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक उनके कार्यक्रम हैं। और कहती हैं यही सरस्वती दीदी जी उस कलाकार की तरह से किसी ऐसे स्थान पर बोले लोग सुनेंगे नहीं, गुजर जाएंगे, और भीड़ के समय, काम के समय सही स्थान ना हो, सही उपयुक्त वातावरण ना हो, सही सुनने वाले कदरदान भी ना हो, तो व्याख्यान वेस्ट हो जाता है। कुछ एक के कान में पड़ेगा, कुछ सुनेंगे, कुछ याद रखेंगे, कुछ नहीं, लेकिन सही स्थान, एक सात्विक स्थान, मंदिर जहां साध्वी सरस्वती दीदी जी का प्रवचन अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा। सरस्वती आंटी शर्मा जी कहती हैं, मिसेस शर्मा, अगर सही जगह ना हो, सही मौका ना हो, सही स्थान ना हो, तो अपना टैलेंट बर्बाद मत कीजिए, टैलेंट की कदर नहीं होती है। तुलसी जी ने भी कहा है, आगत को हर्षय नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां मत जाइए चाहे कंचन बरसे में, सही जगह हो, सही कदरदान श्रोता हो, सही समय भी हो तो आपकी कदर होगी, वरना भाई लोग आपको एक्सप्लॉइट भी करेंगे, टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। व्यक्ति कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, साज कितने भी महंगे क्यों ना हो, आप कितने भी मशहूर क्यों हो, लेकिन किसी ऐसी जगह पर जहां कदरदान ना हो आप फ्लॉप हो जाएंगे। सही स्थान, सही समय, सही लिसनर्स या दर्शक, वहां जाइए।

0: सही स्थान, सही समय और सही रिस्पॉन्स तब मिलता है जब सुनने वाले या देखने वाले सही डिजर्विंग लोग हों, सुपात्र हों, कदरदान हों। आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए आलेख हमें नॉरवुड ग्रीन से श्रीमती सरस्वती शर्मा जी ने भेजा था, और आपका बहुत सुंदर संदेश साध्वी सरस्वती दीदी जी के व्याख्यान के वही विषय में, जो आज अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो रहा है लक्ष्मी नारायण मंदिर में, हमारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद सरस्वती शर्मा जी। जो गीत हमने चिंतन के साथ सुनवाया, दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म जहां प्यार मिले से गाने वाली आवाज लता जी की नहीं थी, किसकी थी बताइए? सुमन कल्याणपुर। चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन का हिस्सा बनता है। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन,
0: आइए अब लौटते हैं अपने कार्यक्रम के मूल रंग की ओर।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: और बहनों भाइयों, कंपेटिटिव रेट क्या हैं आज की? लेट मी टेल यू, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके गिविंग 127.6 रुपीज, इंडियन रुपीज फॉर वन पाउंड। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस लागू।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.
3: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.

0: बैक टू बैक संगीत सुना आपने। और अब एक संदेश भाई, कैच द ब्रांड न्यू गेम शो इंडिया के टॉप 1% होस्टेड बाय अनिल कपूर एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार। डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द जियो हॉटस्टार ऐप नाउ। जियो हॉटस्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप।
1: ये है लाइका गोल्ड फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: सितार सुनिए और

0: क्या कहना भाई इन गीतों का, सलील चौधरी का संगीत और लता जी की आवाज। बहनों भाइयों, आपको जानकर शायद आप सुन चुके होंगे, बाली भाई भी चर्चा करते रहते हैं, सलील चौधरी सितार बहुत अच्छा बजाते थे। और सलील चौधरी साहब भाई लिखते भी थे, ये नहीं मालूम था, क्योंकि इस फिल्म जिसका ये गीत हमने आपको सुनवाया परख, इसकी स्टोरी जो है वो सलील चौधरी साहब ने लिखी थी, और फिल्म के संवाद जो है डायलॉग्स वो शैलेंद्र साहब ने लिखे थे जो गीतकार थे, बिमल रॉय ने बनाई थी और भाई डायरेक्ट भी उन्होंने की थी फिल्म ये। लेकिन चर्चा सलील चौधरी साहब का, उनके संगीत का और उनके सितार का। ये सितार वाली भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, कभी सुनाएंगे आपको, कि अमेरिका में एक म्यूजिक की शॉप पर, हाँ इंस्ट्रूमेंट्स की शॉप पर कैसे सलील चौधरी साहब ने समा बांधा था। अब हमने चिंतन में कहा कि भाई जहाँ कदरदान ना हो वहाँ ना अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहिए, ना कुछ जब सुनने वाले ना हो, लेकिन वो भाई दुकान ही संगीत के साजों की थी, वहाँ ऐसे कदरदान थे साहब कि सलील चौधरी साहब ने वहाँ सितार बजा करके दुकान में ऐसे देखने के बहाने कि भाई मैं ख़रीदना चाहता हूँ, लेकिन जब सुनी सितार पर उनकी धुन ऐसा बजाया कि दुकानदार ने कहा मैं तो समझता था कि आप कोई राहगीर चलते हुए सितार देखना चाहते हैं, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है एक सितार भाई इतना बड़ा सितार, बढ़िया सितार, इतना महंगा सितार जो बरसों से उनकी दुकान में सजा के रखा गया था, कोई कदरदान खरीदार नहीं आया था, दुकानदार ने वो सितार सलील चौधरी को मुफ्त में भेंट कर दिया था। छोड़िए फिल्मी बातों को, फिल्मी बातें बाली भाई लेके आएंगे। फिलहाल थैंक्स टू आवर क्लाइंट्स भाई हु ब्रॉट दिस टाइप ऑफ सॉन्ग्स टू यू।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Like a Gold. Like a Extra podcast update.
0: और लाइक एक्स्ट्रा पर हमारा एपिसोड 34, एपिसोड नंबर 34 इज देयर बाय अवेलेबल। टाइटल है मॉडर्न हैरेसमेंट, आधुनिक प्रताड़ना, बाय होस्टेड बाय दीप राजा। बहुत सारे विषयों पर डिस्कस किए गए हैं, बातें की हैं। ही स्पीक्स टू संगीता पांडे ऑफ IIW और गायत्री शिनोय, प्रिंसिपल बिजनेस एनालिस्ट फ्रॉम अबाउट मॉडर्न हैरेसमेंट। भाई ये विषय बहुत ही ज्वलंत है और आप इसको जरूर देखना चाहेंगे। लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म।
5: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर, गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: TravelHubWorld.com Kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays hum se sasta kahi nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
7: At all protected.
6: Visit travelhubworld.com.
8: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
9: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
10: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
9: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
7: This Ganesh Chaturthi, celebrate the spirit of togetherness and spread festive joy with your loved ones in India.
11: With ICICI Bank UK, send money to India and get a 20 paise preferential exchange rate.
7: Simply use promo code Ganesha20 when you transfer. The promotional period is 14th September to 24th September 2026.
11: So, this Ganesh Chaturthi, make every rupee count and share the joy from the UK to India.
7: ICICI Bank UK. Transfer now. Celebrate together.
12: ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TLCs apply.
13: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
14: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
15: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
14: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915 or visit cashbackremortgage.co.uk.
15: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
16: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
17: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
18: Dubai is the place. 11,
17: 11. Call the Danu Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
19: Danu 11, 11. Danu Properties.
20: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
21: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
20: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
21: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
20: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
22: Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival, Unspoken, featuring short films, feature films, and panel discussions across London between October 9th and 11th.
23: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
20: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
21: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949 250 376.
22: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide. Harrow, famous Spice Village, is now open in Harrow. Sizzling mixed grills, signature masala fish, rich, delicious karais, and fresh naan straight from the tandoor. And with one of the biggest vegetarian menus prepared in a separate vegetarian kitchen. So bring your family, bring your friends, and taste the award-winning flavor of Spice Village. Find us at 1 to 4 Dominion Parade, Station Road, Harrow. Spice Village, Harrow. Now open. Your new place to eat, meet, and celebrate.
1: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
2: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Southall Travel.
3: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
1: Southall Travel can take you there.
4: Southall Travel, at all protected.
5: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
6: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
7: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
8: London's biggest classics all day. Leica Gold.
9: वेरी गुड मॉर्निंग भैया, अगला गीत जो है हमें खबरों तक लेकर चलेगा, लेकिन इसी बीच स्क्रीन पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। वत्सला, आपने ये क्या लिखा कि मैं आज चिंतन मिस कर गई? ये तो अक्षम्य अपराध है, आप बेंच में खड़ी हो जाइए। चिंतन मिस करने की चीज़ नहीं है। अब कोई बात नहीं, आप आर्काइव में से निकाल के सुन सकती हैं हमारे कार्यक्रम, जो है एक महीने तक आर्काइव में रहते हैं ना, वहाँ से निकाल के आप कभी भी सुन सकते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा। और नॉर्थ होल्ड में प्रकाश जी, कीर्ति जी, ज्योति गिरीश शाह भाई, आपको सितार वादन बहुत पसंद आया, सलील चौधरी जी का। नैना शाह सही कहती हैं कि कदरदान तो श्रोता चाहिए ही चाहिए। हम आपके कदरदान हैं रवि जी, कितने सालों से लगातार सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे। निर्मला जी थैंक यू वेरी मच। जगदीश जी बुशी में, अनिल सोनी वियाना में, रंजन थैंक यू वेरी मच, आपको चिंतन बहुत पसंद आया। पम्मी, सुनीता और विजय, विजय आपने एक बढ़िया बात लिखी, कहते हैं आज का चिंतन बहुत अच्छा लगा। भाई हमें वो घटना याद आ गई, आपने जो MLA के बारे में सुनाई थी कि वो वेश बदल करके और अपने ही दफ्तर के बाहर गए थे तो कैसे लोगों ने उन्हें वहाँ से भगाया, धक्के मारने लगे थे अपने ही ऑफिस के बाहर। भाई ऐसा कई बार होता है, आपको बताऊँ, हमारे एक नेता चौधरी बंसीलाल का नाम सुना होगा, उन्हें रेल मंत्री बनाया गया, तो वो रेलों की व्यवस्था और भाई वहाँ मुसाफिरों की सुविधाओं को देखने के लिए एक दिन बस साधारण वेशभूषा में, एक वो हरियाणा में चादर ओढ़ लेते ना, चादर ओढ़ करके और भाई ट्रेन में बैठ गए थर्ड क्लास डब्बे में, और प्लेटफार्म पर कुलियों से बात करते हुए और आम कर्मचारियों से बात करते हुए वो सारी पता लगा रहे थे। खैर उन्हें किसी ने पहचान लिया और उसके बाद भगदड़ मच गई, फिर उन्होंने भेद खोल दिया और वहाँ से निकल गए। और एक बात बताऊँ राज की, अपने साथ भी एक बार ऐसा हुआ था। मैं भी भाई कहीं हम खेतों में शूटिंग कर रहे थे, मैं एक किसान का रोल कर रहा था, बहुत फटे पुराने कपड़े और भाई पगड़ी बांधी हुई थी। लंच का समय हुआ तो यूनिट ने कहा चलिए भोजन का समय हुआ, भोजन करने चलते हैं। गाड़ियों में बैठ के शहर में आए खेतों में से, और भाई खाना खाने के लिए उन्होंने कहा जी आप ये मेकअप बदलेंगे, ये कपड़े बदलेंगे, फिर पहनेंगे, बहुत समय बेकार होगा, अगर आप ऐसे ही चल सके तो हाथ धो के खाना खाइए वहाँ पर। अब मैं गया तो भाई मैंने कहा तुम ठहरो पीछे, मैं टॉप का रेस्टोरेंट था वो हमारे शहर का, शांतमय। और जब मैं अंदर जाने लगा तो साहब उन्होंने तो रोक दिया मुझे, और कुछ कुछ कहने लगे, वो कहते हैं कि ये आपके मतलब का नहीं है। अरे साहब अंदर बोले मीटिंग चल रही है बड़ी इंपॉर्टेंट नेताओं की और ऑफिसर्स की। वो किसी एक ऑफिसर में से डिप्टी कमिश्नर थे वहाँ पर उस समय, आर के गर्ग, उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने कहा भाई इसको आने दे वरना ये हमारी मीटिंग बिगाड़ देगा। उसके बाद सारी यूनिट, मुझे याद है ये घटनाएं भाई, और उन्हीं कपड़ों में मैंने भोजन किया और उसके बाद फिर वापस आके शूटिंग में जुट गए। यादें हैं सब समेट।
10: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
9: और बहनों भाइयों लीजिए समाचारों का समय हो गया है, सुनवाते हैं आपको खबरें और एंडी बर्नहम और ट्रंप की मुलाकात की खबरें।
11: अक्रॉस ग्रेटर लंदन, दिस इज लाइका गोल्ड, 10:35 AM, DAB एंड ऑनलाइन, अ पार्ट ऑफ द लाइका रेडियो नेटवर्क।
12: Top stories this hour. Andy Burnham will meet Donald Trump for the first time later as world leaders gather for the UN General Assembly. The Prime Minister says he'll seek common ground, saying they found a connection during phone conversations. The Defence Secretary says it's in the UK's economic interest to let a British military aircraft refuel Saudi jets. Wes Streeting claims helping Saudi Arabia protect targets in Yemen from Houthi rebel attacks will help keep us safer. The Iran-backed militants have declared a blockade on Saudi shipping in the Bab el Mandeb Strait. Our defence and security analyst Michael Clark says it's significant.
13: It's not just fuel, it's fertiliser, petrochemicals, container ships, all going up to the Suez Canal. Bab el-Mandeb is a really important strait, and if the Houthis have complete control of it, so they can decide who can come and who can go, then the world economy will continue to suffer more than it has done so far.
12: More bad news for the Chancellor, as the government borrowed more than expected last month. It jumped to £18.3 billion, dramatically cutting John Healey's headroom ahead of October's budget. The Lib Dem leader will join calls for a pause in the development of AI later. In his speech to his party's conference, Sir Ed Davey will compare the technology's risks to nuclear weapons. Piers Morgan's claimed he'll sue Earl Spencer over what he calls fabricated inaccuracies in his new book about Princess Diana. Buckingham Palace has already issued a rebuttal over allegations about the King in Swansong, which went on sale this morning. Royal commentator Jenny Bond says this is all likely to be taking its toll on His Majesty.
14: It is damaging, obviously, and you sometimes wonder how much more an elderly man can take. You know, he's had the Andrew scandal, he's had Harry and Meghan, he's had cancer. And now he's got this. I think it's very hard for the King to take it all.
12: And Henry Pollock signed a new contract extension with rugby prem champions Northampton Saints. The deal's worth a reported £400,000 a year. From Sky News, I'm Laura Safe.
10: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
9: Very good afternoon to you. Weather-wise, well, आज के मौसम में वो कहते हैं कि भाई खूब सारी धूप है. Today it will be dry and warm, with sunny spells. Although some areas of cloud will drift in, कुछ areas में ना बादल आएंगे west से, पर थोड़ा छुटपुट रूप में. दोपहर बाद के मौसम में कुछ ऐसा ही है, और आज रात को भी आसमान साफ रहने की संभावना है. ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर लंदन में 24 और मिडलैंड में 23.
11: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7.

0: One mobile app. This is the Leica Radio Network.
1: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।

0: कुछ
1: स्वागत है, वेलकम भाई, दर पे आए हो उस ऊपर वाले के। लेकिन ये गीत सुनकर भैरव भाई कुछ याद आ रहा है आपको? भाई ये गीत सुनकर आपको फिल्म लैला मजनू याद आएगी और उसकी हीरोइन याद आएगी, रंजीता, रंजीता कौर नहीं याद। अरे भाई वो फिल्में लैला मजनू में वो हीरोइन थी अखियों के झरोकों से, पति पत्नी और वो, और भी कितनी फिल्में, दामाद, मेरी बीवी की शादी, भयानक, मेन तो अखियों के झरोकों से बड़ी मशहूर हुई थी फिल्म उनकी। और इसके अलावा भाई अरमान, धुआं, दर्द, क्रोधी, लापरवाह, राजपूत, बहुत सारी फिल्में उन्होंने थोड़े से समय में कर दी और बड़ी खूबसूरत वो हीरोइन थी। गुनाहों का देवता, खैर फिल्में बता करके याद दिलाना मकसद था। रंजीता वाज बोर्न एज रंजीता कौर मिर्ज़ा, अपनी माँ का सरनेम जो उन्होंने अपने साथ रखा था। और रंजीता भाई कुछ फिल्मों में काम करके उसके बाद फिर वो जाने कहाँ खो गई, लेकिन रंजीता का जन्मदिन है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू मैडम रंजीता जी। और साहब पहला गाना जो प्रोग्राम में इस तीसरे घंटे के दौर में हमने सुनवाया आपको, तेरे दर पे आया हूँ, ये तो दूसरा गाना था। इससे पहले जो गाना था वो कौन सा गाना था, तेरा नाम लेके। हाँ तो क्या जाने दिन रात हम पीते हैं तेरा नाम लेके।
2: ए जी मेरा नाम लेके क्यों पीते हो, मैं इतनी अच्छी लगती हूँ।
1: पीने के बाद ही अच्छी लगती हो, नशे में अच्छी लगती।
2: लेकिन मेरा नाम लेके
1: ओ तेरा नाम लेके ऐस करके भाई, जब मैं काउंटर पे जाना ना, पार्टी चल रही है, फ्री दी दारू है, मैं बार बार लेने जाना, वो काउंटर से पूछता पाजी बहुत ज्यादा पी रहे हो तुसी, तो मैं फिर तेरा नाम लेके लेके आता हूँ। मैं कहता हूँ भाई मैं नहीं, बीवी वास्ते लेके चले आ। तू क्या जाने दिन रात हम पीते हैं तेरा नाम लेके। किशोर कुमार की आवाज़ में वो गीत था और रफ़ी साहब व साथियों की आवाज़ में आपने ये सुना तेरे दर पे आया। और भाई ये तीसरे दौर का आगाज़ हो चुका है बैक टू बैक संगीत से। अब आपको एक बार फिर से हम ताज़ा रेट बताते हैं बैंक के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके के।
3: Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके इस समय जो रेट्स दे रहे हैं नोट कीजिए, फॉर वन पाउंड इन इंडियन करेंसी दे आर गिविंग 127.6 रुपीस एंड दैट्स मैक्सिमम। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
3: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
4: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
5: This part of the show is brought to you by Anupama, every day at 7:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
6: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
7: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
8: Have you noticed the way fans shout at football matches?
9: Oh, wake up!
8: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
10: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: We're finally going home for the wedding.
2: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
1: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
2: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
1: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
2: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
1: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
3: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
4: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है.
5: India ke top 1% hosted by Anil Kapoor every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.
6: Your brain now, play the game.
7: हमारी रक्षक है वो.
8: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट.
9: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है? कौन कर रहा है ये?
8: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर. फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
10: खाखरा क्रंच भाखरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
11: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
10: Jaimin Foods, desi cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
12: Leica Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
13: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
14: और भाई भाइयों, आपको ये तो याद दिलाने की जरूरत नहीं कि इस सप्ताह की कलाकार का नाम है कविता कृष्णमूर्ति. कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, उनके पति देव का सरनेम सुब्रमण्यम. और भाई, कविता जी और सुब्रमण्यम दोनों से एक साथ मुलाकात हुई कई बार. सुब्रमण्यम जी जो है वो बड़े मशहूर वायलिन वादक हैं, वायलिन बजाते हैं. और कविता जी क्या गाती हैं, लाइव सुनने का अवसर मिला है. आ रही हैं शो लेकर के लंदन में.

0: जाए, सब हो जाए, जरूर हो जाए। जुड़े रहेगा हमारे साथ, बहुत कुछ होगा।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: स्वागत है भाई अंतिम क्षणों में ये कार्यक्रम के। 1 बजे तक हमारी आपकी ये मुलाकात जारी रहेगी। इसी बीच कुछ और संदेश आकर चिपक गए हैं हमारे सामने स्क्रीन पर। भाई स्टूडियो का माहौल कुछ ऐसा होता है जैसे आप कभी किसी हवाई जहाज के कॉकपिट में बैठे ना, और आपके सामने कई स्क्रीन होते हैं। तो हमारे यहाँ भाई स्टूडियो में 5 स्क्रीन है, जो 4 तो बिल्कुल आंखों के सामने है।

0: व्हाट ए सॉन्ग, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें सुनी आपने, किसने सुनवाई है?
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Ye hai Leica Gold.
1: This is Leica Gold Greater London. Now also available in Greater Manchester, Leeds and Bradford.
0: सामने आ गया है फिर से साउथ ऑल ट्रेवल का संदेश, पैगाम आपके नाम।
1: Breaks are brought to you by South All Travel.
0: साउथ ऑल ट्रेवल वाले याद दिला रहे हैं भाई, अगर दुबई की यात्रा का कोई प्रोग्राम है तो इस डील के लिए इनका बहुत बड़ा नाम है। क्या कह रहे हैं कि वी हैव वेरी कंपेटिटिव हॉलीडे डील्स टू दुबई, कॉन्टेक्ट अस साउथ ऑल ट्रेवल on 0208-574-8410. South All Travel is at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
4: Nothing beats a Jet 2 holiday and the feeling of excitement that begins when you book. We have loads of free child place holidays available and we're Which? Recommended in 7 categories, so you can look forward to complete peace of mind with our VIP customer service every step of the way. Book now with just a £60 deposit per person. Jet 2 Holidays. Package holidays you can trust. After national protected. Subject to availability and conditions.
3: Ye hai Leica Gold.
5: Leica Gold.
0: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price
0: at all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
7: हैरो, इंतजार खत्म। मशहूर स्पाइस विलेज अब हैरो में खुल गया है। सिजलिंग मिक्स्ड ग्रिल्स, सिग्नेचर मसाला फिश, लजीज कराहीज और तंदूर से निकला गर्मा गर्म फ्रेश नान, साथ ही सबसे बड़े वेजिटेरियन मेन्यूज में से एक, एक अलग वेजिटेरियन किचन में तैयार। तो फैमिली और फ्रेंड्स को साथ लाइए और चखिए स्पाइस विलेज का अवार्ड विनिंग स्वाद। आइए 124 डोमिनियन परेड स्टेशन रोड हैरो। स्पाइस विलेज हैरो नाउ ओपन। खाने, मिलने और सेलिब्रेट करने का आपका नया ठिकाना।
8: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
9: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
10: Dubai is the place. 11,
9: 11. Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
11: Danu 11, 11. Danu Properties.
12: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit Ambala.
13: SonaTours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off or lose the discount after. Call SonaTours now on 0208-951-0111.
14: The cycle of love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
15: I left behind everything I knew.
14: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
15: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
14: The Cycle of Love. In cinemas now. Book today at thecycleoflovefilm.com.
16: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. assuming you want to get noticed.
17: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
18: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.
0: वेरी गुड आफ्टरनून टू यू लाइक अ गोल्ड और लाइक अ रेडियो मिडलैंड. भाई आप सुन रहे हैं मनोरंजन कार्यक्रम लाइक अ रेडियो नेटवर्क के इन स्टेशंस पर, इन फ्रीक्वेंसीज पर. क्रिकेट में आपकी दिलचस्पी है तो बता दें भाई, इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मैच शुरू होने लगा है. श्रीलंका टूर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड चूज टू बैट. पहला वनडे इंटरनेशनल खेला जाएगा. स्कोर के आंकड़े हम आप तक पहुंचाते रहेंगे. हमें पता है हमारे श्रोताओं की दिलचस्पी फिल्मों में है, गीतों में है, तो क्रिकेट में भी है. और भाई बता दें आपको कि इंडिया टूर ऑफ जापान, भारत की टीम जापान जाकर के जापानियों के साथ क्रिकेट खेल रही है. आप ये मत समझिएगा भाई टीम नहीं है तो प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा. साहब इंडिया के 4 खिलाड़ी आउट कर दिए उन्होंने लेकिन ये T20 मुकाबला था, पर इंडिया ने 5 ओवर में ही समेट दिया. भाई इंडिया वॉन बाय 2 रन्स. मतलब क्रिकेट नहीं खेलना, आंख बिचोली खेलेंगे. नहीं भाई, जापान की टीम नहीं है इसलिए प्रदर्शन ऐसा, लेकिन देखते जाइए आगे आगे. वैसे खेलों में भाई इंडियन वुमेन ने धमाल किया है, कमाल किया है. उन्होंने श्रीलंका को हरा करके एशियन कप पर कब्जा किया है. वुमेन्स क्रिकेट कॉम्पिटिशन एंड इंडिया वुमेन वॉन बाई 147 रन्स.

0: बड़े सॉन्ग शैलेंद्र सिंह और कंचन गा रहे थे ये गीत भाई, पुरानी फिल्म रफू चक्कर का गीत था ये। और इसी बीच भाई हमारी रेगुलर लिसनर ने एक ये क्या जोक भेजा है, हिना जी ने क्या क्या कह रही हैं, कह रही हैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे एक लड़की को घसीट के स्कूल में ले जा रहे थे तो बुजुर्ग ने रोका, रहे बच्चे छोड़ दो इसे भाई, अगर इसको पढ़ना होगा तो ये खुद स्कूल जाएगी। लड़के बोले पढ़ना होगा, ये स्टूडेंट नहीं है, हमारी मैडम है, स्कूल आती ही नहीं है, दिन भर व्हाट्सएप पे लगी रहती है। होता है, स्कूल से इतना डरते क्यों बच्चे भाई, तुम तो शौक से जाते थे, ये बात और है कि बीच में भाग आते थे। एक बच्चे को ना भाई स्कूल ले जा रहे तो रो रहा जोर से, उसको कहते ऐसे चिल्लाता है बचालो बचालो मुझे, मेरी मम्मी मुझे स्कूल छोड़ दे जा रही है। आगे देखा सामने से कसाई आ रहा बकरे को लेकर, बकरा मैं कर रहा, तो पूछता है मम्मी ये इस बकरे को कहाँ ले जा रहे हैं। बोले इसे बेटा ये कसाई है, इसको ले जा रहा है अपने अपनी शॉप पर इसको जिबा करने के लिए। अच्छा, मैंने सोचा इसे स्कूल लेके जा रहे हैं। बताइए, कर लो बात, छोड़िए क्या रखा है सच्ची बातों में।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड,
2: क्योंकि सांस भी कभी।
1: दिस पार्ट ऑफ द शो इज स्पॉन्सर्ड बाय क्योंकि सांस भी कभी बहुत थी, एवरी डे एट 9 PM ऑन स्टार प्लस एंड स्ट्रीम इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
3: माँ कृपा फाउंडेशन UK तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इन्विटेशन 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी, रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी। कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा। वेन्यू 10 Stonefield Way फर्स्ट फ्लोर Unit 2 साउथ राइस्लिप HA40JS। रोज कथा पछी महाप्रसाद, पोथी यात्रा, कपिल नारायण कथा, कृष्ण जन्म, गोवर्धन लीला, रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों मा जरूर जोड़ाओ। बधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-2287509।
4: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर विम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिट 8 ट्रेडर विम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 Ealing Road विम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
6: गारंटेड
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
6: 02085748410।
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: London, are you ready? Raghavan presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ova Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: Mabster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mabster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
3: The Cycle of Love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
4: I left behind everything I knew.
3: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
4: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
3: The Cycle of Love. In cinemas now. Book today at thecycleoflovefilm.com.
5: Up next, Ballybrumbat with Gold Afternoons on Leica Gold.
6: Manoranjan with Ravi Sharma.
7: और लीजिए साहब, कार्यक्रम को समेटने का समय हुआ जाता है, लेकिन उससे पहले स्वीटी कालाड़ा जी, आज के प्रोग्राम में कौन सा गीत आपको पसंद आया? लिखा है कि बहुत अच्छा गीत था. नहीं था, अच्छा मतलब वो आप ही के लिए लगाया था मैंने. ये नहीं याद आ रहा है कौन सा था, मतलब जो भी था बिल्कुल आपके नाम और डॉक्टर कालाड़ा के नाम, भाई दोनों को आपसे मिले हुए बहुत अरसा हो गया है. बस जब आपके मैसेज आते हैं ये ख्यालों में मुलाकात होती, बहुत अच्छा लगता है. डॉक्टर साहब भी लिखते रहते हैं, थैंक यू वेरी मच. राजेंद्र राज जी, जिंदगी का हर मोड हमारी मर्जी का नहीं होता, कभी वक्त रास्ते चुनता है तो कभी हालात मंजिल बदल देते हैं. क्या बात है, क्या बात, थैंक यू वेरी मच. और आप क्या लिखते हैं जी? अर्जुन जी, सो नाइस ऑफ यू. और भाई सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद. दोहराते हुए कार्यक्रम को समेटते हुए चलें, इजाज़त लें आपसे. नहीं अभी क्यों, पूरे पैसे लेते हो मिस्टर शर्मा, तो इसलिए पूरे समय तक रुको भाई. लोग आते हैं, कभी रास्ते बदल जाते हैं, कभी मंजिल बदल दी जाती है हालात के द्वारा, लेकिन ये आना जाना तो लगा ही रहता है. पर जाते कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं शर्मा जी? क्यों बताएं कहाँ जा रहे हैं? हिम्मत है तो ढूंढ के दिखाओ.

हम तुझे ढूंढ लेंगे। ढूंढने की जरूरत क्या है, बस जरा सा कलर हटा करके दिल में झांकेंगे और आपको पाएंगे। तो बहन भाइयों, दुआ करते हैं आप जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली में रहें या अहमदाबाद रहें। रवि शर्मा को अनुमति दीजिए, बाली भाई का स्वागत कीजिए। मिलते हैं कल 10 बजे की खबरों के बाद। बाय बाय।

0: अब मुश्किल से ये गाना मेरे को इतना पसंद है, लेकिन तीन दिन पहले ये गाना ऑलरेडी हम सुना चुके हैं, तो दूसरा गाना आएगा।
1: Across London, this is Bally Brambat on Like a Gold.

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड आनंद बख्शी का कॉम्बिनेशन सूरज और चंदा 1973, और क्या गाया, क्या एक्सप्रेशंस रफी साहब के। मनु भाई आपकी नजर।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, जस्ट एड हॉट वाटर एंड एंजॉय कोका नूडल्स इन 3 मिनट्स।
2: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
3: लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2, नाउ अवेलेबल ऑन द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप एंड अलेक्सा।

0: पैमी सिंह जी, थैंक यू वेरी मच. यू नो अबाउट रंजीता कौर. इन्होंने कहा कि रंजीता की विलेज है मीठापुर डिस्ट्रिक्ट जलंधर. वो जलंधर के हैं और इसके विलेज में अपने पैमी जी के दोस्त है वो जर्मनी में, वो भी वहाँ से ही है. इनकी फादर दैट इज़ रंजीता के फादर आर्मी में थे और जब से फिल्मों में गई तो सब विलेज में यू नो क्या ऑर्थोडॉक्स पीपल होते हैं, वो लोग चिल्लाना शुरू कर दिया और ये सब हुआ. तो ये है बैकग्राउंड ऑफ द रंजीता देयर. थैंक यू वेरी मच. ये सत्य पे सत्ता, यू नो शी वॉज इन अ व्हील चेयर अपोजिट अमिताभ बच्चन एंड क्या एक्टिंग किया इस फिल्म के अंदर. She was really fabulous.
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca bowl today.
0: And आपको एक और बात भी कह दूं कि 2019 में headlines आ गई, newspaper में headlines आ गई. Headlines ये थी कि राज मसंद, उनके husband, he approached Koregaon Park police station. क्योंकि ये लोग, आपको तो मालूम है कि 1990 में एक फिल्म जो थी दैट वाज गुनाहों का देवता, उसके बाद रंजीता अमेरिका चली गई उसके फैमिली और बच्चे के साथ, हस्बैंड और बच्चे के साथ. एंड देन दे स्टार्टेड रनिंग अ बिजनेस देयर विद लॉट्स ऑफ 7-Eleven बिजनेसेस. अभी वो वापस जब आई 15 साल के बाद, तो उसके बाद उसने वापस लाने वाले थे सचिन. सचिन वॉज द मैन हु ब्रॉट अ बैक सेइंग के मैंने अखियों के झरोखों से कब मैंने सीक्वल बनाना है, तो सीक्वल बनाने के लिए यू प्लीज कम बैक. तो उसको मना लिया एंड शी केम बैक इनटू द फिल्म्स एंड शी डिड सचिन के साथ एक दूसरी उसने फिल्म की एंड रीयूनाइटेड इन 2011. कौन सा था, जाना पहचाना, वो फिल्म का सीक्वल था अखियों के जरों होसे का. एंड देन उसके बाद मिठुन के साथ भी 2008 में शी हैड डन अ फिल्म विच गॉट रिलीज इन 2012, दैट वॉज जिंदगी तेरे नाम. दैट वॉज शॉट इन 2008 लेकिन 4 साल के बाद रिलीज हुई. बट ये जो हादसा हुआ जब वो अमेरिका से वापस आ गई सचिन के कहने पे और उसने एक्टिंग शुरू कर दिया, तो उसके हस्बैंड तो कोरेगांव पार्क एक पुलिस स्टेशन है इन पुणे, वो कंप्लेन करने गए कि रंजीता एंड हर सन दैट्स आवर सन स्काई फिजिकली अब्यूजिंग हिम एंड थ्रेटनिंग हिम ड्यूरिंग अ हीटेड आर्ग्यूमेंट. अभी आर्ग्यूमेंट क्या थी, आर्ग्यूमेंट क्या थी कि बेटे ने पैसा मांगा डैडी से और कहा कि मुझे बिजनेस खोलना है. एंड राज मसन द फादर ही रिफ्यूज टू गिव द सन मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस. उसमें फिर क्या हुआ कि वो पुलिस का कंप्लेंट हुआ, वो 3 दिन कहीं और होटल या क्लब में रहने लगा और पुलिस ने फिर सब मामला ठंडा कर दिया. वो लोग फिर सुलह कराई और 3 दिन के बाद वापस पेपर में आया कि एवरीथिंग इज ओके, हमने सब सॉर्ट आउट कर दिया है. मतलब शायद बेटे को पैसा दे दिया होगा और कुछ ना कुछ, मतलब इट वॉज नॉट अबाउट के ओ हस्बैंड वॉज एंग्री बिकॉज इसका अफेयर चल रहा है कहीं पे, ये सब कुछ था ही नहीं. हीटेड आर्ग्यूमेंट इन द फैमिली, जब बेटे ने पैसा मांगा इन्होंने ना बोला तो माँ बेटे ने या हीटेड आर्ग्यूमेंट में धक्का मुक्की हो गई तो वो पुलिस स्टेशन पहुँच गया. ये बात थी. पर ये बातें आपको बाली ब्रह्मट से मिल सकती है, विकिपीडिया में नहीं है ना.
1: Across London. This is Bally Brambat on Leica Gold. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Well, each currency equivalent to 1 sterling pound, US dollars 1.3365, Indian rupees 127.69, Afghan Afghanis 86.61, Pakistani rupees 370.38, Kenyan shillings 173.06 and Mauritian rupees 63.68.
1: Leica Radio. A Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download LemFi now. T's and C's apply. Goldrate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £104.34 per gram.
1: Goldrate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. Leica Gold, part of the largest Asian commercial radio network in the UK. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Jaimin Foods, the authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
3: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
5: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
6: Dubai is the place. 11, 11.
5: Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
7: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
9: गारंटेड।
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
9: फोन 02085748410।
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
10: हैरो इंतजार खत्म। मशहूर स्पाइस विलेज अब हैरो में खुल गया है। सिजलिंग मिक्स्ड ग्रिल्स, सिग्नेचर मसाला फिश, लजीज कराहीज और तंदूर से निकला गर्मा गर्म फ्रेश नान, साथ ही सबसे बड़े वेजिटेरियन मेन्यूज में से एक, एक अलग वेजिटेरियन किचन में तैयार। तो फैमिली और फ्रेंड्स को साथ लाइए और चखिए स्पाइस विलेज का अवार्ड विनिंग स्वाद। आइए 124 डोमिनियन परेड स्टेशन रोड हैरो। स्पाइस विलेज हैरो नाउ ओपन। खाने मिलने और सेलिब्रेट करने का आपका नया ठिकाना।
11: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
12: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
13: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.
14: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
15: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
16: SonaTours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off. Or lose the discount after. Call SonaTours now on 0208-951-0111.
17: The Cycle of Love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true-life adventure.
18: I left behind everything I knew.
17: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
18: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
17: The Cycle of Love. In cinemas now. Book today at thecycleoflovefilm.com.
1: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. Across London. This is Bally Brambat on Leica Gold.

0: अखियों के झरोखों से 1978। दूसरा गाना है पति पत्नी और वो महेंद्र कपूर और सुषमा श्रेष्ठा ने गाया है। हमने रंजीता कौर को हैप्पी बर्थडे कहा आज, कैसा लगा ट्रिब्यूट आपको? व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी एंड यूबिक्विटस फेस, दैट इज 7 फेशियल एक्सप्रेशंस, यूबिक्विटस फेस ऑफ रंजीता।
1: L-Y-C-A. This is Leica.
2: ठंडे ठंडे पानी से ना

0: We have a bit of a sad story in our industry, Bollywood. एक माँ और बेटी की कहानी है. माँ ने बेटी से कहा, एक्टिंग क्यों नहीं शुरू करती तू? बेटी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना. उन्होंने कहा, कोशिश कर बेटी. एंड माँ की बात सुन ली. बेटी 18 साल की थी. उसने कोशिश की और एक बॉलीवुड में एक फिल्म का डेब्यू किया, राजा की आएगी बारात, 1997 में. वो लड़की का नाम रानी मुखर्जी और माँ का नाम कृष्णा. कृष्णा मुखर्जी पास्ड अवे ऑन ट्यूसडे एट द एज ऑफ 75. Laika Gold would like to pay a tribute by expressing our joy in the way a mother encouraged her daughter, and today the daughter is one of the topmost heroines, topmost actresses of Bollywood. Abhi, unki maa ne award jo mila, नेशनल अवार्ड रानी मुखर्जी को, जिस बेटी को उन्होंने एनकरेज किया था 18 साल की उम्र में, आज वही बेटी को नेशनल अवार्ड मिला, मिसिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे. तब माँ ने कहा, 30 साल तक ये एक्टिंग करती रही और 30 साल बाद ये इंडस्ट्री उसको अप्रिशिएट कर रही है, लेकिन मेरा कहना ये है कि शी गॉट इट बट शी गॉट इट वेरी लेट. क्योंकि ब्लैक फिल्म जो थी जिसमें मेरी बेटी ने एक्टिंग किया था, वो फिल्म में उसको अवार्ड मिलना चाहिए था. काफ़ी फिल्में की इसने और आज उसको अवार्ड मिला है. मैं खुश हूँ, लेकिन मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ, मिला लेकिन बहुत लेट मिला. दैट सेम मदर हु एनकरेज्ड Rani to do acting is no more. Krishna Mukherjee has gone to heaven's abode. Unki atma ko sadgati prapt ho. Or I hope Rani Mukherjee will have the strength to overcome these sad times.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can fetch up to 127.3 Indian rupees. 127.3 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Nothing beats a Jet 2 city break. This year, explore magical Christmas markets in cities like Strasbourg and Colmar. Enjoy delicious festive bites, find wonderful gifts, and make unforgettable memories with 22 kilograms of baggage and 10 kilograms of hand luggage included. Book now with Jet 2 City Breaks. Flight, hotel, city. App to national protected. Subject to availability and conditions.
3: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambat. Bali Brambat. Gem in Foods. Bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
4: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 p.m. on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar.
5: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the The New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
7: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
6: ये तो बताओ, कोई पता चला?
7: गुरु गुरु,
8: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
6: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
9: शीघ्र शीघ्र
8: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर.
10: टू बुक कॉल 0208-514-5400. Online at Eventbrite.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
13: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
12: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
13: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
12: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
14: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
15: No more worries for me or you.
16: Southall Travel, at all protected.

0: book Japan tour now. Visit starters.co.uk or call
1: 0208-900-2323.
2: The wait is over. Prakhyat Spice Village Hawe Haro ma khuli gayu che. Sizzling mixed grills, signature masala fish, swadisht karahiyo ane tandoor ma thi nikrela garma garam fresh naan. Saathe sauthi mota vegetarian menus ma thi ek alag vegetarian kitchen ma tayyar. To family ane friends ne saathe lavo ane maano Spice Village no award winning swad. Avo 124 Dominion Parade, Station Road, Haro. Spice Village Haro, now open. Khawa, marwa ane celebrate karvanu tamaru navu sarnamu.
3: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
4: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
3: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
4: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
6: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स Your travel mantra.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागासन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
8: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208 507 7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
10: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
11: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 0208767-2142.
12: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Like a Gold, Traffic and Travel.
2: This is Martin with your travel. The A312 Church Road and Mandeville Road, busy from the White Hart roundabout to the Target roundabout and on to Northolt Station. The A4020 Uxbridge Road, heavy between the A312, the Parkway and Southall Park. The A406 North Circular Road, slowing in both directions at the Hanger Lane to Array today. And it's slow on the A3 West Hill northbound between Tibbetts Corner and Upper Richmond Road. Congestion on the A316 Chertsey Road westbound. You head from Twickenham Bridge to Hospital Bridge Road roundabout to the Tube, and minor delays on the central line between Leighton and Epping, between Leytonstone and Hainault, between North Acton and West Ruislip, and between North Acton and Ealing Broadway, and that's down to cancellations. That's your latest traffic and travel.
1: Ye hai Like a Gold, 10:35 AM.
0: Ye hai
3: Like a Gold.
0: Like a Gold. This part of the show is brought to you by Anupama, every day at 7:30 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: हमारी रक्षक है वो.
5: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट.
6: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
5: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, द वन, स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया, इन सिनेमास फ्राइडे 25th September. फॉर UK रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
7: वी आर फाइनली गोइंग होम फॉर द वेडिंग.
8: आई नो, आई कांट वेट टू सी एवरीवन, द होल फैमिली विल बी देयर.
7: फ्लाइट्स बुक्ड, आउटफिट्स पैक्ड, बट व्हाट अबाउट आवर फोन्स? वी विल नीड देम फॉर डायरेक्शंस, व्हाट्सएप, फोटो and keeping everyone updated.
8: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
7: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
8: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
7: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
0: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
9: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410. साउथहॉल ट्रेवल. At all protected. Start.

0: to book now, visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
2: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
3: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
4: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
3: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
5: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 02208767627।
6: sonajewelers.co.uk स्पेशल ऑफर हॉलिडे ऑफ अ लाइफटाइम विद अमेजिंग डिस्काउंट। 14 डेज कैनेडियन रॉकीज एंड अलास्का क्रूज इन 2027। बुक बिफोर द एंड ऑफ सेप्टेंबर एंड गेट 400 ऑफ और लूज द डिस्काउंट। कॉल सोना ज्वेलर्स नाउ ऑन 02 08 951 0111।
7: जब सामने तुम आ जाते हो, क्या जानी क्या।
8: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
9: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
1: रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
1: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
2: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस।
1: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. Two departures, November and February, it's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208 951 0000.

0: करते नहीं।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Leica Gold, traffic and travel.
3: This is Martin with your travel. Delays this evening on the M4 as you head onto the elevated section eastbound from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. It's queuing on the A312 the partway southbound before the M4 Junction 3. Church Road, Mandeville Road slow from the White Hart roundabout to the Target roundabout and then on to Northolt Station. A406 North Circular Road slowing both ways at the Hangar Lane Gyratory. Ladbroke Grove partially blocked around Lansdowne Walk. It's due to a broken down vehicle. Traffic slowing in the area. To the Tube and minor delays on the central line between Leytonstone and Epping, between Leytonstone and Hainault, between North Acton and West Ruislip, and between North Acton and Ealing Broadway, and that's down to cancellations. And that's your latest traffic and travel.
4: It's me again to remind you that tonight's Euro Millions jackpot is £32 million, which means it's time to play the song again.
5: Get in tonight's draw, Euro Millions from the National Lottery. It could be you.
6: Estimated jackpot. Rules apply. 18 plus.
7: Leica Gold.
8: This part of the show is brought to you by Anupama. Every day at 7:30 p.m. on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
10: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे फर्स्ट फ्लोर यूनिट 2 साउथ राइसलिप HA40JS रोज कथा पछी महाप्रसाद पोथी यात्रा कपिल नारायण कथा कृष्ण जन्म गोवर्धन लीला रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों मा जरूर जोड़ाओ वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-228-7509
11: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
12: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
11: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
13: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
14: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
13: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
14: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
13: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
15: Start touring.

0: Like a Gold, traffic and travel.
1: This is Martin with your travel. Still got delays on the M4 onto the elevated section eastbound as you head from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. It's queuing on the A312 the partway southbound before the M4 Junction 3. A312 Church Road and Mandeville Road slowing from the White Hart roundabout to the Target roundabout and then on to Northolt Station. The A406 North Circular Road slowing southbound at the Hangar Lane Gyratory. On Ladbroke Grove around Lansdowne Walk, that earlier broken down vehicle is being cleared. Banner to the Tube and minor delays on the central line between Leytonstone and Epping, between Leytonstone and Hainault, between North Acton and West Ruislip, and between North Acton and England Broadway due to cancellations. That's your latest traffic and travel.
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM. क्योंकि
3: सांस भी कभी. This part of the show is sponsored by क्योंकि सांस भी कभी बहुत थी. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: हैरो इंतजार खत्म. मशहूर स्पाइस विलेज अब हैरो में खुल गया है. सिजलिंग मिक्स्ड ग्रिल्स, सिग्नेचर मसाला फिश, लजीज कराहीज और तंदूर से निकला गर्मा गर्म फ्रेश नान, साथ ही सबसे बड़े वेजिटेरियन मेन्यूज में से एक अलग वेजिटेरियन किचन में तैयार. तो फैमिली और फ्रेंड्स को साथ लाइए और चखिए स्पाइस विलेज का अवार्ड विनिंग स्वाद. आइए 124 डोमिनियन परेड स्टेशन रोड हैरो. स्पाइस विलेज हैरो नाउ ओपन. खाने मिलने और सेलिब्रेट करने का आपका नया ठिकाना.
5: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
6: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
5: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
6: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
7: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
8: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
7: ये तो बताओ, कोई पता चला?
8: गुरु गुरु,
9: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
8: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है.
9: सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
7: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
10: शीघ्र शीघ्र.
9: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November.
11: टू बुक कॉल 0208-514-5400. Online at Eventbrite.
12: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
13: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
14: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena, Wembley in London.
13: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
14: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
13: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
15: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
16: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
17: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
18: देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम.
17: साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे.
18: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग. कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410. दैट्स 8574-8410.
19: साउथहॉल ट्रेवल. At all protected.
20: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
21: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
22: Sonatours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off or lose the discount after. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
0: Up next, Anissa Nasir with The Big Show on Leica Gold.
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: और मैं क्या कहूँ, ला ला ला ला ला ला, मेरा भी दिल चाह रहा है ला ला ला कहने को, क्योंकि हमेशा ही की तरह आज भी मनु जी ने, मेरा ख्याल है भी मुकेश जी ने पूरा एक जुमला भी मुंह से नहीं निकाला होगा, जवाब भिजवा दिया और नतीजा वही कि जवाब गलत है। गीतों में कुछ ना कुछ कॉमन है और वो क्या कॉमन है वो आपको बूझना है, बहुत से लोग बूझ भी रहे हैं। अभी मुझे मौका नहीं मिला है कि मैं देख पाऊँ किसने सही और किसने गलत जवाब भिजवाया है अब तक, तो कुछ ही देर में ये राज हम खोलेंगे और बताएंगे कि किसका जवाब सही है और किसका जवाब गलत।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 127.3 Indian rupees today. Don't forget to exchange in branch, online ya phir SBI Yono mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business bank

0: Banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Anissa Nasir. Live across Greater London with The Big Show. This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 p.m. on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar.
1: माया भाईनी मौजमाणवा थई जाओ रेडी माँ कृपा फाउंडेशन यूके प्रेजेंट्स भव्य डायरो मायाबाई आहिर जयश्री भोजविया अने निर्मल सिंह झाला साथे 26 सप्टेम्बर 2026 ना रोज
2: वेन्यू फर्स्ट फ्लोर यूनिट 3 10 स्टोन फील्ड वे साउथ राइसलीप HA40JS
1: टिकट्स 30, 40 अने 50 pounds लाइट रिफ्रेशमेंट इंक्लूडेड
2: बुकिंग माटे कॉल करो रश्मि शाह 0772-287-509
3: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
4: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
3: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
4: Call 0208 706 0915 for a free, no-obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
3: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
0: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
6: माय फ्रेंड दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है
0: इंडिया के टॉप 1% होस्टेड बाय अनिल कपूर एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार
7: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 0208-767-7627
8: sonajewelers.co.uk स्पेशल ऑफर हॉलिडे ऑफ अ लाइफटाइम विद अमेजिंग डिस्काउंट 14 डेज कैनेडियन रॉकीज एंड अलास्का क्रूज इन 2027 बुक बिफोर द एंड ऑफ सितंबर एंड गेट 400 ऑफ और लूज द डिस्काउंट कॉल सोना ज्वेलर्स नाउ ऑन 0208-951-0111
9: Like a Cool London ka number one Asian retro music station ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe Feel good track Brought to you by Dairy Valley.
10: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: कल चौदहवीं की रात थी, सब भर रहा चर्चा तेरा। आपसे मेरे सितारे नहीं मिलने वाले, आपसे मेरे सितारे नहीं मिलने वाले, जैसे दरिया के किनारे नहीं मिलने वाले। लोग जितने भी यहाँ उर्दू जुबान बोलते हैं, उनको अंदाज तुम्हारे नहीं मिलने वाले। लड़खड़ाते हुए ये जान लिया था मैंने, तेरी बाहों के सहारे नहीं मिलने वाले। उनकी फूलों से शनासाई नहीं हो सकती, जिनको रुखसार तुम्हारे नहीं मिलने वाले। और इस तखारे से तो लगता है कि इस बार हमें इस मोहब्बत में खसारे नहीं मिलने वाले। दैट्स अ गुड न्यूज। द ओनली बैड न्यूज इज कि अगर मनु जी और उमर जी का जवाब दोनों का एक कर दिया जाए तो ये जवाब सही हो सकता है। वैसे अलहदा अलहदा तो मनु जी का भी गलत है और उमर जी का भी गलत है। और इन्हीं पर बस नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह मकबूल साहब आपका भी गलत है। जीशान जी, सरोज जोशी जी, आफ्ताब गिल जी, नीलेश जी, फवाद जी, अमित पटेल जी, मिसेस के विजय गुडोरी जी, फरजाना जी, रानी जी, दीनी जी, जिनको पूरा यकीन था कि आज वो रानी बनेंगी, अजिंकिया जी, आप सबके जवाब गलत हैं। सिर्फ और सिर्फ दो सही जवाब मुझे मिले हैं सही। और मतलब आप लोग क्यों इतनी गहराई में जा रहे हैं, ज़रा गौर तो करें आप। मतलब अब बहुत सारे गीतों में उन चीज़ों का जिक्र ही नहीं है जिनको आप मेंशन कर रहे हो। एक गीत में था तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि वो थीम है। कुछ आई समझ? मंजीत संगर जी, यू आर द रानी ऑफ द आवर। और चौधरी फरीद अहमद जी, यू आर द राजा ऑफ द आवर।
0: ये है Like a gold।
2: और तमाम राजाओं और रानियों के लिए एक मैसेज के फाइनल फ्यू डेज टू गो टू द दिवाली स्टोरी, ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स जो हैं वो हैं लाइका रेडियो नेटवर्क। इट टेक्स प्लेस एट ओवो अरीना वेम्बली में ऑन संडे 27 सितंबर। डोर्स ओपन एट 4:30 PM विद स्टूडेंट प्री शो, जो कि शुरू होगा 5 PM और ये चलेगा 5:45 PM तक। एंड देन द मेन परफॉर्मेंस फ्रॉम 6:15 PM टू 9:30 PM। टिकट जल्दी से बंदोबस्त कर लीजिए diwalistory.com के जरिए।
0: Hey there, मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM।
3: बदन पे सितारे लपेटे हुए

0: चांद भी हैरान और दरिया भी परेशानी में है, तारिक राहिल जी ने लिखा है। चांद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है, अक्स किसका है जो इतनी रोशनी पानी में है। अगर तो ये जवाब है तो तारिक साहब मेरी तरफ से आपको साफ जवाब है, अंजुम जी आपको भी, पॉल मसी जी आपको भी और रीटा जी आपको भी, गीता हर्ष जोशी जी, उल्लास जी, ताहिर जी और अमिता जी, क्या बात है, वेल डन।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Anisa Nasir with The Big Show.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
3: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट TravelHubWorld.com।
4: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉक-इन्स का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
5: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
6: Lights on, shutters up, staff ready.
5: But today's customers don't start on the high street.
6: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
5: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
6: They walk into your competitors.
5: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
6: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
7: This Ganesh Chaturthi, celebrate the spirit of togetherness and spread festive joy with your loved ones in India.
8: With ICICI Bank UK, send money to India and get a 20 paise preferential exchange rate.
7: Simply use promo code Ganesha20 when you transfer. The promotional period is 14th September to 24th September 2026.
8: So, this Ganesh Chaturthi, make every rupee count and share the joy from the UK to India.
7: ICICI Bank UK, transfer now. Celebrate together.
9: ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. DLCs apply.
10: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe.

0: चीज आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: लंदन्स बिगेस्ट क्लासिक्स ऑल डे. दिस इज लाइका गोल्ड.

0: अब उसने वक्त निकाला है हाल सुनने को, अब उसने वक्त निकाला है हाल सुनने को। बयान करने को जब कोई दास्तां भी नहीं, जमीन पैरों से निकली तो ये हुआ मालूम, हमारे सर पे कई दिन से आसमां भी नहीं। और आप लोग ना जाने क्यों इतने लंबे चौड़े बखेड़ों में पड़ रहे हैं। दो मासूम मासूम से अल्फाज हैं जिन्हें बूझना था, और तोची जी आपका भी जवाब मैं सही नहीं मान सकती। और डॉक्टर राजदीप जी ऑल द वे फ्रॉम इंडिया से, देहरादून से हमारे साथ इस वक्त निभा रहे हैं हमारा साथ, बेहद शुक्रिया। और मुझे इजाज़त दे रहे हैं कि आई कैन कॉल हिम राज। राज जी बहुत सारे राज हैं यहाँ पर, हमारे अपने बॉस भी राजी हैं, तो मैं आपको डॉक्टर राजदीप ही कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इतनी मतलब मुझे लिफ्ट करवाने के लिए बेहद शुक्रिया। गुरसरन जी जी, डॉक्टर साहब आपका भी जवाब सही नहीं है। गुरसरन जी जी, रजनीश जी, सोहबत खान जी और प्रतिभा जी, चलें प्रतिभा जी मान लेती हूँ।
1: Like a gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakte 127.4 Indian rupees, 86.4 Afghani, 369.5 Pakistani rupees, 163.7 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LEICA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £105.08 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: जवाब गलत होने की सूरत में माजरत करने की हरगिज़ हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अरे ये तो बस ऐसे लाइट हार्टेड सा एक फीचर है, बस ये जानने के लिए कौन कौन सुन रहा है और कौन ध्यान से सुन रहा है और कौन ध्यान से नहीं सुन रहा। लाइक अ गोल की नशियात अनीसा नासिर आपके साथ मंडे टू फ्राइडे बिटवीन 7 and 10 PM, और मेरे साथ आप सब, बेहद शुक्रिया।

और कुछ देर में लुट जाएगा हर बाम पे चांद, अक्स खो जाएंगे आईने तरस जाएंगे, अर्श के दीदाए नमनाक से बारी बारी सब सितारे सरे खाशाक बरस जाएंगे। चांद और सितारे सिर्फ और सिर्फ ये कॉमन था। दिलीप सरोज जी, शहजाद भट जी, फायजा खान जी और एक दो नाम और भी हैं, सलमा जी, संध्या जी, शकीला नेडा जी, किरित जी, वीना जी, आपके जवाब सही हैं। दिनेश जी, शगुफ्ता जी, आपके जवाब आते अधूरे हैं तो नहीं मान सकती, लेकिन थैंक यू सो सो सो वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग।

चाहते वक्त वफा नींद भरोसा गजलें, चाहते वक्त वफा नींद भरोसा गजलें, ऐसा क्या था जो तेरे सर से न वारा हमने। तू मेरी इब्तिदा है, तू मेरी इंतहा है। गॉड एंड गन फिल्म का नाम था, एंड गाने वाली आवाज किसी तारुफ की मोहताज नहीं, वन एंड ओनली कुमार सानू जी। और डॉक्टर राजदीप जी, हम आपको बिल्कुल नहीं भूले, हमने आपका नाम भी लिया, हमने आपका मैसेज भी मेंशन किया और हमने आपको बदनाम भी किया। हमारे यहाँ इसको बदनाम

0: करना कहते हैं जब आपका जवाब गलत होता है। वो प्यारी क्या, वो साथी क्या जिसमें बदनामी ना हो, हम तो ये मान के चलते हैं। तो बेहद शुक्रिया, ऑफ कोर्स आई रिमेंबर यू, हाउ कैन आई फॉरगेट यू। कहते हैं आधा जवाब मेरा सही था, बिल्कुल, इसीलिए तो सही नहीं माना उसको, क्योंकि पूरा जवाब चाहिए होता है। और बस जो एक जवाब आ जाता है फर्स्ट टाइम, वो ही, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और शायरी वाला वादा मैंने आपसे किया था कि आपकी भिजवाई शायरी शामिल करूँगी, बस दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे ज़िंदगी दे और मुझे थोड़ा सा टाइम भी दे।
1: Now in more places than ever before. Birmingham, Bradford, Huddersfield and Leeds. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127.3 Indian rupees today. Toh bhuliyega nahi, exchange in branch, online ya phir SBI Yono mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और भई ये क्या मजाक है, इजाज़ जी कह रहे हैं मैं बिजी हूँ क्योंकि घर में फैमिली आई है, फ्रेंड्स आए हैं, रिश्तेदार आए हैं आई थिंक, और मिल्टन कीन्स से आपने ये भी बता दिया। आया कौन है उसे बता तो दें, बहने भाई चलें जो भी आया है कोई बात नहीं, मेहमान रहमत होते हैं। तो हमारी संध्या जी कह रही हैं कि मैं भी थोड़ी सी बिजी हूँ लेकिन सुन रही हूँ। भाई ये तो कोई मजाक ना हुआ भाई कि बिजी हैं। बट सर मुझे आपका मैसेज समझ में नहीं आया, तो ज़रा खुल के बताइएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। और लीजिए अब ये चंद अल्फाज इन्हें नोट कीजिए और फिर मुझे बताइए कि ये कौन सा गीत है। और जवाब सही ना होने की सूरत में अपोलोजाइज करने की हरगिज ज़रूरत नहीं है, मैं कि उस्तानी थोड़ी हूँ कि ओ सॉरी टीचर सवाल गलत हो गया है जवाब नहीं आया। इट्स ओके, वैसे मतलब मैं रोब ऐसे ही डालती हूँ जैसे उस्तानियाँ डालती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ओके, राख कर जाए प्यार की दुनिया जी सकेगा, राख कर जाए प्यार की दुनिया जी सकेगा।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Is your cat drinking enough? Discover Purina One Hydralife and help support their daily hydration with a taste they'll enjoy. Purina One Hydralife. Make it easy.
1: This is Anisa Nasir with The Big Show. This part of the show is brought to you by Anupama. Every day at 7:30 PM on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar.
3: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to try. Visit heraldplastic.com.
4: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.
0: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
1: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन
6: इज अ ग्रेट, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
7: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
8: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: problem.
1: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Ek jadoo hai sabhi ka, kai mantar lekin, sabz goon hain, kahin neeli, kahin bhoori aankhein. उसको पहलू में बिठाकर उसे तकने का नशा, किस कदर हो गई चेहरे पे जरूरी आंखें, गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं। और ये भी एक फरमाइशी गीत है, जी हाँ, किसी ने मांगा था मुझसे रिसेंटली, मैं सुनवा नहीं पाई और आज मौका देखते ही मैंने ठा करके सुनवा दिया। लीजिए दोस्तों, ठा करके तो मुझे जवाबात भी मिलने हैं, एंड आई एम वेरी प्लीज टू टेल यू दैट डॉक्टर राजदीप जी फ्रॉम देहरादून, ही इज द राजा ऑफ द आवर, सबसे पहले आज हमारे उल्टे पुल्टे को उन्होंने ही बूझा है। कमाल हो गया भी, कमाल हो गया, राजा बनना मुबारक हो आपको। अनिल जी, गीता हर्ष जोशी जी, अजिंक्या जी, गुरसरनजीत जी, रजनीश जी, उल्लास जी और गुल जी। गुल जी, आप तो वाकई में गुल खिलाने लगे हो आजकल।
1: This is like a gold. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
3: Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact कीजिएगा Southall Travel को आज ही 0208-574-8410. Southall Travel is, याद रहे, Atoll protected हैं।
1: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
4: Like a gold.
5: Hello friends, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

0: एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
1: तो आपको बता देते हैं नई एपिसोड के बारे में, जिसे होस्ट किया है दीप राजा जी ने, और वो बात करेंगे संगीता पांडे से। दे एक्सप्लोर मॉडर्न हरासमेंट एट वर्क, फैमिली एंड व्हेन वन शुड स्पीक अप। तो आपको बताना ये भी ज़रूरी है कि लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट जो है अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल और अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, तो ज़रूर देखिएगा।
0: लाइक एक्स्ट्रा Anissa Nasir with The Big Show, weeknights from 7 PM.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
3: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट TravelHubWorld.com।

0: कभी कभी मुझे इतना दिखाई देता है, कभी कभी मुझे इतना दिखाई देता है, हर एक तरफ तेरा चेहरा दिखाई देता है। मैं उससे दूर भी भागूं तो कितनी दूर भला, वो जितना दूर हो उतना दिखाई देता है। तुम्हें मैं प्यार भी तो मेरी जान करता हूँ, तुम्हें तो बस मेरा गुस्सा दिखाई देता है। तुम्हारे सीने पर सर रख के सो रहा था मैं, मुझे भी ख्वाब में क्या क्या दिखाई देता है। तू खुद को एक नजर देख और मुझको भी, जो जैसा होता है वैसा दिखाई देता है। कभी कभी मुझे इतना दिखाई देता है, हर एक तरफ तेरा चेहरा दिखाई देता है। लीजिए बात करते हैं उल्टे पुल्टे की और दोहरा भी देते हैं, शायद कुछ लोग और भी कोशिश करना चाहें। राख कर जाए प्यार की दुनिया जी सकेगा। और अब तक डॉक्टर राजदीप जी ने पूजा, अनिल जी ने, गीता हर्ष जोशी जी ने, अजिंक्या जी ने, गुरसरनजीत जी ने, रजनीश जी ने, उल्लास जी ने और गुल जी ने। एजाज जी को शायरी अच्छी लगी, मेहमानों से छुपके आ गए हैं क्या, उनको भी लगाएं लाइन पर, इनसे कहीं रेडियो सुना करें, बड़ा स्वाब होगा। रेडियो भी सुनना चाहिए भाई, दिल बहलाने के लिए कभी कभार वो क्या कहते हैं, चेंज ऑफ सीनरी और चेंज ऑफ ऑडियो भी होना चाहिए हर वक्त। बीवी है तो खावंद की सुनते रहो, खावंद है तो बीवी की सुनते रहो, कभी कभी मेरी भी सुना करें प्लीज।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
0: जी हाँ, और लीजिए मेरी भी सुनिए, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, कैच द ब्रांड न्यू गेम शो इंडिया के टॉप 1%, होस्टेड बाय अनिल कपूर जी, एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार। डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू द जियो हॉटस्टार ऐप नाउ। जियो हॉटस्टार जो है ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta 369.9 Pakistani rupees, 127.5 Indian rupees, 86.5 Afghan Afghani, 163.9 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: LAIKA Gold.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £105 and 0.08 pence per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: लीजिए दोस्तों, मैं किसी ना किसी बहाने फरमाइशें पूरी करती रहती हूँ, जैसे कि पंजाबी तड़के में भी पसंद है ये गीत सईदा जी का, उन्होंने भी पिछले दिनों मुझसे मांगा था और मैं सुनवा नहीं पाई। तो लीजिए, कल हमने मलिका तरन्नुम नूरजहां जी के कितने प्यारे प्यारे गीत सुने, बाली जी ने भी सुनवाए आफ्टरनून में, शाम में रही सही कसर मैंने पूरी की। मैं भी कोशिश करती रहूँगी कि आइंदा भी ये कसरें इसी तरह निकालती रहूँ।
2: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.
5: Punjabi Torka with Anissa.

0: क्या बात है, क्या प्यारी फरमाइश है सईदा जी आपकी। आई होप कि आपने सुन ली होगी, और अगर सुन ली तो रसीद जल्दी से भिजवा दीजिए। और संध्या जी कह रही है मेरी फरमाइश सुनवा दीजिएगा, तो मैं पूछ रही हूँ कौन सी फरमाइश। तो कह रही है कल ही तो बताया था। अरे बहन, मुझे ये नहीं पता कि मैंने सुबह खाया क्या था। वैसे आज तो कुछ खास खाया भी नहीं, तो मुझे कैसे याद रहेगा कि कल क्या भेजा था आपने। चलो आपने भिजवा दी दोबारा से, बेहद शुक्रिया। समझा करो ना, आप अभी नहीं समझते। राजदीप जी आप भिजवा दो, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करती हूँ, काम बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन आप भिजवाइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी शामिल करने की। और इस गीत को लेकर जा सब वैसे मेहमान मतलब मुसर्रत साहिबा उनको चाय वाय दे रही होंगी, और आप आँख बचा कर निकल आए इधर। कहते हैं क्या प्यारा गीत है, वजाहत अतरे जी के, वजाहत अतरे जी की धुन, ख्वाजा परवेज जी के बोल होंगे, नन्ना जी एजाज और मुमताज, अंजुमन सुल्तान राही जी, बिल्कुल बहुत ही प्यारी फिल्म थी ये, और उसी का ये बहुत ही प्यारा एवरग्रीन सॉन्ग सईदा जी ने सुनना चाहा था कल, और मैं कल शामिल नहीं कर पाई। तो ऐसी नालायकियाँ तो मैं करती रहती हूँ, कौन सी नई बात है। और जहाँ तक हमारे उल्टे पुल्टे का सवाल है, कमल शिवनानी जी और मीनाक्षी ब्राह्मण जी, आपने भी बूझ लिया है कि कौन सा गीत है, कुछ ही देर में मैं शामिल करने जा रही हूँ। और कमल जी को तो काफ़ी शिकवा है कि जिसने ये गीत लिखा उसको ऐसा लिखना नहीं चाहिए था। वैसे आपस की बात है कमल जी, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, बद्दुआ नहीं देते, हाथ उठाते नहीं, नजरों से गिरा देते।
1: Anisa Nasir, live across Greater London with the Big Show. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: हमारी रक्षक है वो।
3: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
4: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
3: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर। फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
5: नो नीड टू फ्लाई बैक होम दिस समर हॉलिडे, कम टू अंबाला एंड ट्राई आउट आवर खोया बर्फी मेड फ्रॉम प्योर बफेलो मिल्क। यस, इट्स द सेम Burfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo, only from Ambala. Don't take our word for it, come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai, just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
6: Haro, the wait is over. Prakhyat Spice Village have Haro ma khuli gayu che. Sizzling mixed grills, signature masala fish, swadisht karahiyo ane tandoor माथी निकलेला गर्मा गरम फ्रेश नान, साथे सौथी मोटा वेजिटेरियन मेन्यूज माथी एक अलग वेजिटेरियन किचन मा तैयार। तो फैमिली अने फ्रेंड्स ने साथे लावो अने माणो स्पाइस विलेज नो अवार्ड विनिंग स्वाद। आवो 124 डोमिनियन परेड स्टेशन रोड हैरो, स्पाइस विलेज हैरो नाउ ओपन। खावा मळवा अने सेलिब्रेट करवानु तमारु नवु सरनामु।
7: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल Auto protected.
9: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
1: Sanasir with the Big Show, weeknights from 7 PM.

0: कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। मिले के बिछने मगर तुम ही से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। कहीं रहो तुम कहीं रहें हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। जो ये खता है तो उम्र भर ये खता करेंगे, ये तय हुआ था। लेकिन अक्सर जो तय हुआ होता है वो होता नहीं, ऊपर वाले के अपने ही प्लान्स होते हैं। भाई फरमाइशों के लिए मुझे लग रहा है कि एक घंटा बहुत कम पड़ रहा है, तो क्या ख्याल है 2 घंटे ना कर दिए जाएं, ट्यूसडे टू थर्सडे 2 घंटे आपकी फरमाइश। यस यस यस, मुझे आवाज़ें आ रही हैं। अब देखें ना, पूरा नेक्स्ट आवर जो है वो फुल है। तो अब मुझे हरप्रीत जी वैंकूवर में सुननी है, उनका गीत अभी सुनवाना पड़ रहा है।
1: लाइक अ कूल, लंदन का नंबर 1 एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन।

मेरा साया। ये था फिल्म का नाम, 1966 की फिल्म। गाने वाली आवाज वन एंड ओनली मलिका तरन्नुम नूर जहां जी की, और फरमाइश करने वाली वन एंड ओनली गीता जी और हर्षद जोशी जी। आप दोनों के नाम गया ये प्यारा सा गीत, जो कह दिया वो करके दिखाना पड़ा मुझे, जो कह दिया वो करके दिखाना पड़ा मुझे, इस दिल लगी में जान से जाना पड़ा मुझे, जिसके बगैर सांस भी लेना मुहाल था, हाय वो एक शख्स भुलाना पड़ा मुझे। जीवन में कोई और था, दिल में था कोई और, जीवन में कोई और था, दिल में था कोई और, दोनों से हाल दिल का छुपाना पड़ा मुझे। फिर जिसके बाद मिलने का इम्कान ही ना था, पॉसिबल ही नहीं था, कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं मिलने की, फिर जिसके बाद मिलने का इम्कान ही ना था, आखिर वो फैसला भी सुनाना पड़ा मुझे। इस बार हौसले से जो गम उसके सह गई, एहसान जिंदगी का उठाना पड़ा मुझे, जो कह दिया वो करके दिखाना पड़ा मुझे, इस दिल लगी में जान से जाना पड़ा मुझे। हम जान तो नहीं मांग रहे आपकी, लेकिन नुकसान अफजल जी आप बेंच पर खड़ी हो जाए, आपके घर में कोई तो होगा ना बेंच, अगर बेंच नहीं है तो कुर्सी पर ही खड़ी हो जाइए। मतलब क्यों क्यों आखिर क्यों आज इतनी बेवफाई क्यों दिखाई आपने? प्रोग्राम के फाइनल आवर में ठुमक ठुमक चलती हुई आ गई, जैसे मैं कुछ कहूँगी नहीं, मैं और कुछ ना कहूँ, रुखसाना जी नॉट पॉसिबल। एनीवेज कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, और भी काम है दुनिया में अनीसा को सुनने के सिवा। लेकिन आप मेरा टाइम किसी को मत दिया करें प्लीज़, मैंने पहले भी कितनी बार समझाया, आप समझते ही नहीं।

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: £1 in British sterling can get you up to 127.3 today Indian rupees. Or agar aapko yaad ho to nahi hai तो मैं याद दिला देती हूँ. डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन या फिर एसबीआई योनो मोबाइल ऐप के जरिए. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
1: और वो जो मैंने कहा कि आपकी फरमाइश के लिए दो घंटे जो हैं वो आपके नाम कर दिए जाएं ट्यूसडे टू थर्सडे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, लिहाजा मैं अपना फैसला वापस ले लूंगी.
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Is your cat drinking enough? Discover Purina One Hydralife and help support their daily hydration with a taste they'll enjoy. Purina One Hydralife. Make it easy.
0: This is Anisa Nasir with The Big Show.
3: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera every day at 8 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
4: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
3: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
3: For more information, contact 07585 801 801. Official radio. Your partner, Leica Radio Network.
5: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे फर्स्ट फ्लोर यूनिट 2 साउथ राइस्लिप HA40JS रोज कथा पछी महाप्रसाद पोथी यात्रा कपिल नारायण कथा कृष्ण जन्म गोवर्धन लीला रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों में जरूर जोड़ाओ वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-227-5209.
6: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
7: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place. 11,
7: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
8: Danu 11, 11. Danu Properties.
9: हमारी रक्षक है वो.
10: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट.
11: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
10: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th September. फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
12: आर यू सिटिंग ऑन अ मॉर्गेज एंड गेटिंग नथिंग बैक? व्हाट इफ योर रीमॉर्गेज पेड यू?
13: एट कैशबैक रीमॉर्गेजेस वी फाइंड यू डील्स दैट पुट रियल मनी बैक इन योर पॉकेट, नॉट जस्ट a lower rate but actual cash, hundreds sometimes thousands of pounds just for switching.
12: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
13: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915, or visit cashbackremortgage.co.uk.
12: Cashback Remortgages, your mortgage should work for you.
0: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station, ab available hai great लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे. Artist of the week is brought to you by our new podcast Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम वन एंड ओनली कविता कृष्णमूर्ति जी आर्टिस्ट ऑफ द वीक। हजारों दिल में छुपे हों हमारे खार मगर चेहरे पर तो कम अज कम गुलाब रखते हैं। आपके आ रही हैं शहर में लाइव परफॉर्म करने के लिए। जी हाँ, आपको मज़ीद मैं तफसील बता देती हूँ ताकि आप उन्हें जाकर ज़रूर सुने लाइव। लेजेंड है कविता कृष्णमूर्ति जी, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। परफॉर्म करेंगी लाइव एट द रॉयल एल्बर्ट हॉल ऑन संडे 1 नवंबर, और आप तक उनको लेकर आ रहे हैं सनातन इवेंट्स वाले एज अ दिवाली स्पेशल। टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू बॉक्स ऑफिस और एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: Santhiya ji, are you there?

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Aapke farmaishi geeton ka silsila chal raha hai. Aapke apne Allah ka gold par Rani Sanasil ke saath pure 10 baje tak ka saath hai. Aapka aur mera Sandhya Bhavse ji. गीत सुनने के लिए और रसीद भिजवाने के लिए बेहद शुक्रिया. और बिल्कुल सही कहा जहीर खान साहब आपने, वो पंजाबी की कहावत है, कहना तीनू तो सुनाना नूनू. तो जो मैंने रुखसाना अफजल जी को कहा ना, उसका ज़्यादा इशारा आपकी तरफ भी था. तो अक्लमंद को इशारे काफ़ी होता है, तो आप तो खुद समझदार हैं, आप समझ गए. लेट से आने पर कहते कोई इमोजी नहीं मिला जिसमें कान पकड़े हों, तो खाली कान और फिर हाथ भिजवा देते. एनीवेज नहीं, इस तरह माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है. बेहद शुक्रिया, आप सुन रहे हैं, साथ निभा रहे हैं. बकरियों को मेरी हेलो कह दीजिएगा प्लीज़, याद से भूलिएगा नहीं.
0: ये है लाइका गोल्ड.
3: का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.
0: दिस इज अ निशा नसे विद द बिग शो. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road Wembley. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट travelhubworld.com.
5: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Jasmine.
6: Oh, terrible weather.
5: It's raining cats and dogs out there and she doesn't want to look like a drowned rat for an interview. You help Jasmine stay dry and we'll help keep you covered.
7: See ya, good luck with the interview.
6: Thank you, bye.
5: Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
8: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
9: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
8: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
9: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
8: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. UK.
11: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
12: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
13: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
14: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. LYCA. This is Leica.

0: आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। किसी इंसान को अपनी मौत का पता नहीं है कि उसने कब इस दुनिया से जाना है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। जिंदगी का सफर क्या सफर है। भारती जी, आपके इस बहुत ही प्यारे से फरमाइशी गीत ने थोड़ा उदास कर दिया। कहते हैं यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का, खुद हम मिट्टी के हैं और फना होने से डरते हैं। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का, फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta 127.5 Indian rupees, 86.4 Afghan Afghani, 369.8 Pakistani rupees, 163.8 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LEICA Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £105 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: और इससे पहले कि मेरी नाजुक से दिमाग से बात निकल जाए, मुझे दिलीप सरोज जी आपसे सॉरी करना है, अपोलोजाइज करना है, क्योंकि आपका भी जवाब सही था प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, लेकिन मैं नालायक, मैंने अपने आप को थप्पड़ मारा छोटा सा मुन्ना सा, और मैं आपका नाम मेंशन नहीं कर पाई। आई होप कि आप महसूस नहीं करेंगे, तो हो जाती है, बंदा बशीर हूँ, कभी भूल चूक हो जाती है। वैसे आज फॉर सम रीज़न आई एम सो वेरी टायर्ड एंड आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू गो होम एंड स्लीप। अब आपको दिल की बात नहीं बताऊँ तो किसको बताऊँ, है ना। वैसे चले फिर चलते हैं लॉलीवुड।
1: फ्रॉम लॉलीवुड विद लव विद अनीसा।

0: लीजिए भी आपसे प्यार करते करते प्यार भरी बातें प्यार भरे गीत सुनवाते सुनवाते तीन घंटे कब कहाँ बीत जाते हैं, मंडे टू फ्राइडे ऑनेस्टली समझ में नहीं आता है। और ये सब क्रेडिट जो है वो आप ही को जाता है, आपके प्यार को, आपकी सपोर्ट को। हर रोज़ मोहब्बत की मैं तजदीद करूँगा, हर रोज़ मोहब्बत की मैं तजदीद करूँगा। दिन एक मोहब्बत का मुकर्रर नहीं करते, वो एक ही होता है फकत एक जहाँ में, हर शख्स का इस दिल में तकर्रुर नहीं करते। लीजिए दोस्तों, मेरे जाने का वक्त हुआ जाता है, बशर्ते जिंदगी मंडे में लौट के। मंडे क्या हो गया अनीसा, भागी थकी हुई हूँ। कल इंशाल्लाह शाम 7 बजे मैं फिर हाजिर होती हूँ आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में। मेरे जाने के बाद लाइका के जो गोल्ड नाइट का चुना हुआ म्यूजिक है, जिसे सैंडी जी हैंड पिक्ड कहते हैं, और उसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल हैंड पिक्ड है, उसे ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। काजल सुबह हाजिर हो जाएंगी, आजकल वो डबल ड्यूटी दे रही हैं, सुबह भी और ड्राइव टाइम शो में भी आपका साथ निभाती हैं। इसी तरह हमारे पूरे नेटवर्क में जो जो जहाँ जहाँ आपका साथ निभा रहा है, उसका साथ निभाइए और उन्हें शुक्रिया का मौका दीजिए। तो मैं जाऊँ, दो फरमाइशें बाकी हैं। जिंकिया जी जाना नहीं, शब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, रब सोने दे हवाले।
1: ये है Leica Gold. This is Leica Gold Greater London. Now also available in Greater Manchester, Leeds and Bradford. This is Anisa Nasir with The Big Show. Leica Gold. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you, so you can help people like Thomas.
3: Daddy!
2: He needs to get home for bedtime stories because he does the absolute best voices. You help Thomas show he cares, and we'll help you take care of business. Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald Disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
6: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
4: Southall Travel can take you there.
1: Southall Travel, at all protected.
7: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
8: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
7: ये तो बताओ, कोई पता चला?
8: गुरु गुरु,
9: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है, सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
7: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
10: शीघ्र शीघ्र।
9: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
6: टू बुक कॉल 0208 514 5400. Book online at Eventbrite.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: Two businesses,
13: same town,
12: same service.
13: One appears on page one of Google,
12: the other doesn't.
13: Guess which one gets the customer?
12: The truth is brutal.
13: The first page of Google gets the business.
12: Everyone else gets what's left.
13: So here's the real question:
12: when your customers search for what you sell, do they find you?
13: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
12: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
1: Up next, non-stop classics on Gold Nights on Leica Gold.
14: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 AM Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.

0: a gold. This part of the show is brought to you by Anupama, every day at 7:30 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar. Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
1: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena, Wembley in London.
0: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
1: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
2: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October, and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars, supported by BFI National Lottery Funding. Official radio partner, Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
4: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स your travel mantra.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
7: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 02039635757 to arrange your meeting.
8: Bollywood ke legend kalakar sirf Leica Gold par.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
1: Ready UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi and more surprises on the night.
2: Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026 happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
1: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner Leica Radio Network.
3: मैंने ना फंक्शन रखा हुआ है.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
5: गारंटेड.
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
5: फोन 02085748410.
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
6: Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival, Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th.
0: Classic Nagme, aapke apne Leica Gold par.